सुप्रभात। रेडियो FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संबत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 44 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक के पंथी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में

मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुंग 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इस माया जाल में फंसकर प्रभु यहाँ भटकता रहा ता उम्र, और ये आत्मा की पीड़ा है। जब सुधाई तब तक सब कुछ हाथ से निकल गया। तो यह मन की अंतर पीड़ा यह बताती है कि समय रहते अगर प्रभु स्मरण में कुछ सांसें दी होती, ये सांसें समर्पित कर दी होती, तो फिर यह पीड़ा की स्थिति से ना मन को गुजरना पड़ता, ना आत्मा रोती, ना प्राण विकल होते। और इस अहंकार की गिरफ्त में आकर ही तो प्राणी ये सारे कर्म कर बैठता है। विषय वासना उसको खींचती है, और तभी तो ये माया बहुत आकर्षक होती है। इससे बच के रहना, ये ऐसे हमारे संत ऋषि मुनि ये मार्ग बता गए, दिखा गए कि हमें उस पे चलना चाहिए, सतमार्ग पे चलना चाहिए। और ये जो शरीर रूपी ये जो रथ है, इसे संयमित होकर चलाना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े रुके, रात दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, मनमा गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो।

कृष्ण, जब यह ब्रज छोड़ जाते हैं, अब भगवान की लीला ही तो है। उन्होंने अपने आचरण में बताया कि दुख सुख मिलन विरह यह सब जीवन का हिस्सा है और लेकिन दुख जो है वह उसके कारण या वजह अलग अलग हो सकते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं, तकलीफ ऐसी होती है, पीड़ा ऐसी होती है कि किसी से बिछड़ने के बाद वह अंतर मन को बहुत सताती है, रात दिन निस दिन सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा। और उस अंदर की पीड़ा जब आंखों में आंसू बनकर ढलती है तो सदा ही ऐसा लगता है कि जैसे मानो यह ऐसी बरसात है जो कभी थमती ही नहीं है। जी हाँ साथियों, यही तो पीड़ा है गोपियों की। जब से कान्हा ब्रज छोड़ के गए तब से वो उनकी याद में सदा ही इस विरह स्थिति में रहती हैं और वो ये उनकी आत्मा ये कह उठती है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सितारे। ये पावस ऋतु तो सदा ही हम पे रहती है, ये भाव इनको शब्दों में व्यक्त किया महाकवि सूरदास जी ने उनकी मन की व्यथा को बताया। तो यह प्रेम ही तो है कि जब एक पल भी कान्हा विस्मृत नहीं होते।

0: आप सुन रहे थे संवेक स्वरों में देशभक्ति पर रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वरों में भक्ति पर रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे अनूप जलोटा और साथी मुकेश, MS सुब्बुलक्ष्मी, हरिओम शरण और नंदिनी शरण के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता साथियों, चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है सहनशीलता संबंधी विचार। स्वर है यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: बात लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। दक्षिण प्रदेश में एक नगर था। उस नगर में तिरुवल्लुवर नामक एक ज्ञानी गृहस्थ रहते थे। उन्हें क्रोध कभी छूता तक नहीं था। उसी नगर में देवदत्त नाम का एक श्रेष्ठ पुत्र भी रहा करता था। वो बहुत क्रोधी और लोगों को परेशान करने वाला प्राणी था। एक दिन एक आदमी ने देवदत्त से कहा, यदि तुम महात्मा तिरुवल्लुवर को क्रोध दिला सको तो तुम्हें जाने। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहकर वो महात्मा तिरुवल्लुवर के समीप गया और उसने देखा कि तिरुवल्लुवर महाराज अपने बुने हुए कपड़े बेच रहे थे। उनके पास एक चादर भी थी। देवदत्त ने महात्मा तिरुवल्लुवर से पूछा जाकर, महात्मा इस चादर के कितने दाम हैं। महात्मन ने जवाब दिया कि 2 रुपये। देवदत्त उस चादर को फाड़कर उसके 2 टुकड़े करते हुए बोला, भाई मुझे तो आधी चाहिए, इसके दाम कितने हुए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, सीधा सा हिसाब है, 1 रुपया। देवदत्त ने फिर उसे आधा फाड़ दिया और कुटिलतापूर्वक पूछा, अब कितने हुए। संत ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, 8 आने। देवदत्त को महात्मा तिरुवल्लुवर की सहनशीलता और उनके क्रोध न करने पर बहुत आश्चर्य हो रहा था, लेकिन वो सहज ही हार मानने वाला नहीं था। उसने चादर को पुनः फाड़ दिया और पूछा कि अब कितने दाम हुए महात्मा। महात्मा पुनः शांत भाव से बोले, सीधा सा तो हिसाब है मित्र, अब इसके दाम हुए 4 आने। तब देवदत्त बोला, ये चादर तो चिथड़े चिथड़े हो गई है, अब ये किस काम की, मैं इसे नहीं खरीदूंगा। इस पर संत ने कहा कि तुम ठीक कहते हो भैया, ये टुकड़े अब तुम्हारे काम नहीं आ सकते। ऐसा कहकर उन्होंने टुकड़ों को समेटना शुरू कर दिया। अब तो देवदत्त को अपने मन में अत्यधिक आत्मग्लानी की अनुभूति हुई। उसने महात्मा जी की तरफ 2 रुपये फेंकते हुए कहा, ये अपने 2 रुपये ले लो, नुकसान तो मैंने किया है, आप इसे क्यों भोगेंगे। महात्मा ने स्थिर भाव से कहा, मित्र इतने अधिक परिश्रम की कीमत तो यही हो सकती है कि कोई व्यक्ति इसे ओढ़े और इसका सुख प्राप्त करे। यदि मैं तुमसे 2 रुपये ले लूंगा तो तुम जिस अभिमान के साथ यहां आए हो वही अभिमान लेकर वापस लौट जाओगे। तुम जिन्हें टुकड़े कहते हो उन्हें मैं सुई से सी लूंगा और फिर से एक नई चादर तैयार हो जाएगी और फिर इसे मैं ओढ़ूंगा। इस तरह तुम्हारे द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई होगी। देवदत्त अपने सारे अभिमान की बात भूलकर पानी पानी हो गया और वो महात्मा जी के पैरों से लिपट गया। उसने क्षमा मांगी। कहा जाता है कि अहंकार का भाव स्थायी नहीं होता, सहनशीलता भी अपने आप में एक पराक्रम है। सहिष्णु व्यक्ति शीघ्र नहीं तो कभी न कभी

0: क्रोधी व्यक्ति पर विजयी विजय प्राप्त कर ही लेता है।
1: आप सुन रहे थे अभी सहनशीलता संबंधी ये विचार चिंतन बिंदु क्रम में। वचन सुर था यतीन्द्र चतुर्वेदी का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

सीता जी की माता के मन में संशय पैदा हुआ कि देखने में सुकुमार बालक राम उस प्रचंड धनुष को कैसे तोड़ सकेंगे। इस पर राम जी के महत्व को जानने वाली एक चतुर सखी ने रानी को समझाया, हे रानी, तेजस्वी व्यक्ति देखने में छोटा हो सकता है, किंतु वो वस्तुतः छोटा नहीं होता। मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस मंत्र के वश में हैं, वो भी तो अत्यंत छोटा होता है। इसलिए देवी, संदेह त्याग दीजिए। सखी के वचन सुनकर रानी की उदासी मिट गई और विश्वास बढ़ गया। उधर उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से विभिन्न देवताओं से विनती करने लगीं। अपने हृदय की बढ़ती व्यग्रता को पहचानकर सीता जी सकुचा गईं और सोचने लगीं कि यदि तन मन वचन से मेरे चित्त की श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति है तो वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने निश्चय कर लिया कि या तो वे श्री राम को ही वरेंगी अथवा स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर देंगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर अनुराधा पौडवाल और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे संध्या 6:45 पर फिल्मी भजनों पर आधारित भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे मनमोहन गुप्ता की हास्य वार्ता, विषय होगा भगवान बचाए ऐसे जीवन से। माफ कीजिएगा जीजन्ते।

रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कार्यक्रम का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा शाम 7:31 पर, और श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर आप 12 बजे भी सुन सकते हैं गीत बात SMS कार्यक्रम के अंतर्गत। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संध्या 6:15 पर प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती समय की मांग और पशुपालन की आवश्यकता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड, इन विषयों पर चर्चा सुनेंगे। सुधीर अग्रवाल से विजय सिंह नौलखा की भेंटवार्ता आप सुनेंगे इसी कार्यक्रम में। विषय होगा धान में फसल सुरक्षा। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में समय का सदुपयोग करें और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विषय से संबंधित होगी आज की बात, और बीना शर्मा वार्ता प्रस्तुत करेंगी। विषय रहेगा समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दोपहर 2:30 का। बहने कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में बहने सुनेंगी सुंदरता का सही अर्थ, स्वस्थ त्वचा और आत्मविश्वास, और साइबर सुरक्षा और महिलाएं साइबर दुनिया में सुरक्षित रहें, इन विषयों पर चर्चा इसी कार्यक्रम में बहने सुनेंगी। और उर्मिला शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी पॉलीथिन का प्रयोग और उसके दुष्परिणाम विषय से संबंधित। साथ ही कुछ घरेलू टिप्स भी बहने इसी कार्यक्रम में सुन सकेंगी। कार्यक्रम आबोहवा सुनिएगा सुबह 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में वंदना शर्मा जानकारी देंगी घरेलू रसायनों का उपयोग विषय से संबंधित। गांधी चर्चा सुनिएगा सुबह 9:30 पर। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में चित्रकला विषय पर गांधी जी के विचार। हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 बजे का। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज कलाकार होंगे हर प्रसाद राजपूत, और प्रातः 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्वामी

0: यादराम शर्मा का लिखा हुआ रासलीला में प्रसंग नित्य रास और प्रस्तुति होगी हरिबाबू कौशिक की। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। साथियों, अब समय हो चुका है खेती की बातें कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं बायो पेस्टिसाइड्स विषय से संबंधित ये जानकारी दे रहे हैं KL वर्मा।
1: तक आप ट्राइकोडर्मा और विवेरिया वैश्याना जैविक रसायनों के बारे में बलिवान जानते हैं। अब इन इसके अलावा भी और जैसे हमारा बायो पेस्टिसाइड या बायो एजेंट्स जो है तैयार किए गए हैं, सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, ये नया बायो एजेंट है जो हमारी गवर्नमेंट की प्रयोगशाला मुरादाबाद में तैयार किया गया है। इस ये जो जैविक है ये जीवाणु से बना है और ये चना की फसल के साथ साथ में टमाटर और अन्य फसलों में भी उपयोगी पाया गया है। ये जीवाणु पौधे में लगने वाले 3 रोग कारकों को रोकने में सक्षम है। इससे सबसे पहले जो इसका जो प्रयोग किया जाता है बीजोपचार, इसमें 1.25 लीटर पानी में 115 ग्राम गुड़ तथा 55 ग्राम चीनी को गर्म करके चिपचिपा घोल तैयार करने के उपरांत इसमें 500 ग्राम सूडोमोनास को डाल दें और गाढ़ा घोल तैयार कर लें। ये घोल 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। बीज में घोल अच्छी तरह से मिलाने के बाद छाया में सुखाकर ही बुवाई करें। इसके अलावा पौधों की जड़ों का उपचार भी इससे किया जा सकता है। इसके लिए 500 ग्राम सूखी गोबर की खाद को 2.5 लीटर पानी में घोलकर गाढ़ा घोल बनाने के बाद 500 ग्राम सूडोमोनास को डालकर इस गाढ़े घोल में पौधों की जड़ों को डुबाकर उपचारित करने के उपरांत लगाना चाहिए। इस प्रकार से उपचारित अधिकांश सब्जियों वाली फसलों जैसे फूलगोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज और धान की पौध में जड़ों में लगाने से जड़ों से उत्पन्न होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं उनसे इसकी मतलब इनकी रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा इसका भूमि का भी शोधन इससे किया जा सकता है। इसके लिए 800 ग्राम सूडोमोनास की मात्रा को लेकर 10 से 15 किलोग्राम पिसी हुई बालू हो या मिट्टी हो रेत जैसा उसमें मिला के प्रति हेक्टर बुवाई से पूर्व जैसे हम खाद छिड़कते हैं उसी हिसाब से अगर इसका प्रयोग करें तो इससे भूमि का भी शोधन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बायो एजेंट्स तैयार हो रहे हैं जिनमें प्रमुख रूप से 2 नाम है, मेटाराजियम, ये भी बायो पेस्टिसाइड है जो दीमक नियंत्रण के काम में आता है और इसका प्रयोग भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे विवेरिया वैश्याना का, यानी 2 किलो मेटाराजियम लेके 20-25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद हो या न हो तो सूखे कंडे हो उनको फोड़ के बना लें आप और उसमें पानी के छींटे देने के बाद और उसको उसमें रख दें 10-15 दिन छाई में रखें आप। इसके बाद उसको खेत में प्रयोग कर दें। ध्यान ये रखें कि जितने भी बायो एजेंट्स हैं ट्राइकोडर्मा सबसे मजबूत होता है, तो दीमक नाशक या अन्य जो रसायन है इनको पहले प्रयोग करें, ट्राइकोडर्मा को सबसे बाद में प्रयोग करें। इसके अलावा एक और बायो एजेंट्स है उसको वर्टिसिलियम है, ये अब तक तो जमीन के अंदर वाले कीड़ों के लिए था लेकिन ये ऊपर जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जैसे जैसिड एफिड, ये पाउडर फॉर्म में है और इसका 1 किलोग्राम को 300-400 लीटर पानी में घोल के कीड़ों के ऊपर इसका छिड़कने से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान ये रखें कि बायो पेस्टिसाइड या बायो एजेंट का जो भी प्रयोग करें आप शाम को 4 बजे के बाद के उपरांत ही इसका छिड़काव करें। अन्य
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो आपसे कुछ ही देर में।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्ध त्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमम् उत्तरदायित्वं विद्यार्थी

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत साथियों, आप सबकी नज़र इसकी से है।

आप सुन रहे थे अभी रतन फिल्म में इस गीत को जहराबाई अंबाले वाली और करण दीवान की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी भूपेंद्र सिंह और प्रीति सागर की आवाज़ में भूमिका फिल्म के इस गीत को। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी मजरू सुल्तानपुरी की इस रचना को मुकेश की आवाज़ में। संगीत नौशाद साहब का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

केवदानी ने गीत को लिखा था और संगीत संगीतकार रवि कुमार शर्मा का था। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: चपल नयन तपल आदि चमके चंद्र पोर सी लच लच लचके अधर धरत पग धरन धरत इन नाचत है ब्रज नारी।
1: ये आवाज थी राजकुमारी की फिल्म नवबहार के इस गीत में। सत्येंद्र ने इस गीत को लिखा था, रोशन का संगीत था। आज का ये कार्यक्रम साथियों यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण बस अब से कुछ ही देर में।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ, कहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर, मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कल मध्यरात्रि एक वीडियो संदेश जारी करके इस मामले में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीत कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो, तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के पेपर लीक के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले को राष्ट्र की निर्णायक आवाज बताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र और कठोर दंड देगा। प्रधानमंत्री के फैसले का विद्यार्थियों ने स्वागत किया है। बाराबंकी के छात्र निहाल अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने की सरकार की ये पहल सराहनीय है।
2: इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम सरकार अकाउंटेबिलिटी ले रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आगे चीजें ऐसी ना हो। इसके लिए मोदी जी ने आज ट्वीट किया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो जिम्मेदार है उन पे एक्शन लेंगे। हमारी यही मांग थी कि जो भी अकाउंटेबल लोग हैं, जिनसे गलती हुई है, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनको सजा मिले। हमारी सरकार से यही मांग कि सरकार हमारी मांग पूरी कर दे।
0: इस बीच केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा।
3: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्दी से जल्दी अपने सामान्य वजन को प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से सोनम वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिनों से चल रहा अपना उपवास समाप्त कर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर के सहित 995 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आवागमन को आसान बनाने का माध्यम है।
4: ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी।

0: उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी, फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उत्तर प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है।
0: याद करिए हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है या सवा

0: जो कुल दूरी हो गई है या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। 9 साल पहले 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने।
1: मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कल से गोरखनाथ मंदिर में शुरू हुए सप्त दिवसीय श्रीराम कथा के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या में कल विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय संत समाज की बैठक हुई। मणिराम दास छावनी में हुई इस बैठक में श्री रामलला मंदिर की धार्मिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।
2: बैठक में संतों ने ट्रस्ट द्वारा धार्मिक समिति के पुनर्गठन का स्वागत किया। बुधवार को हुई श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया गया था। कल हुई बैठक से संत समाज ने स्पष्ट संदेश दिया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे में अनियमितता मामले में हो रही जाँच पर भरोसा रखा जाए और जाँच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष न पहुंचा जाए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
1: सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के कई जिलों में तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं। हापुड़ में यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने 17 कांवड़ मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल बाइक पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रहकर निरंतर पेट्रोलिंग करेंगे। वहीं वाराणसी में शिव भक्तों और कांवड़ यात्रियों की संभावित भीड़ के मद्देनजर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा, स्वच्छता, यात्रियों की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। कल ही के दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी पड़ा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर उफान पर है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। वीडियो संदेश जारी कर इससे संबंधित बिल को यथाशीघ्र सदन में पारित कराने के प्रयासों के प्रति जताई सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समृद्ध होगा प्रदेश। और बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से गंगा, घाघरा और शारदा नदी उफान पर। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में जताया बारिश का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।

तो श्रोता साथियों, आप सब बढ़िया हैं? बढ़िया हैं कि नहीं? है ना, अच्छे रहो। देखो, मौसम तो ऐसे ही चल रहा है। एक तरफ मौसम सुहावनो है रहो है काफ़ी जो है, कहूँ कहूँ तो खूब बढ़िया बरसात है कि चुकी है, और आज मथुरा में ही अपने यहाँ खूब सवेरे ते ही पानी पड़ो, और भीना कहना कि भीनो भीनो सो मौसम है रहो। लेकिन ये सुहावना मौसम तभी तो बढ़िया लगेगा जब हमारे सबको स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, और यह समय मौसमी जो बीमारियां हैं वे आक्रमण कर ही कर रही हैं। तो विनते हमें बच के रख रहना है, अपने परिवार को बचाए के रखना है। और साथियों, ब्रजमादरी कार्यक्रम में आओ, सबसे पहले आनंद लें जी लोकगीत को।

तो अभी जो है आप शालिनी शर्मा की आवाज़ में इस लोकगीत को सुन रहे थे, और अब आओ सुने ये रास लीला में आज नित्य रास प्रसंग को हम सुने, आनंद लें। या को लिखो है स्वामी यादराम शर्मा ने, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की है।

0: हे श्री प्रिया पीतमजू, आपके नित्य रास मंडल को समय है रहो है, सो कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो।
1: अच्छा सखी, हे श्री किशोरी जू, आपके नित्रास को समय है गयो है, सो कृपा करके नित्रास में पधारो।
0: पधारो प्यारे।

0: तो अभी आप आनंद ले रहे थे रासलीला में, आज नित्य रास को प्रसंग को है ना, या कोई लिखे होते स्वामी यादराम शर्मा ने, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की हती।
1: से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई।
1: तो आज को ये कार्यक्रम यही सम्पन्न हुआ। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी और समय हो चुका है अगले प्रसारण का। आपसे कुछ ही देर।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
5: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने

0: के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट

0: बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं की पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन

में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिसेज न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग टू कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare

0: के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: कैसे
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
8: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
9: चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
10: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी

आप सुन रहे थे अभी जसपाल सिंह और कल्याणी मित्र साथियों की आवाज़ में फिल्म सावन को आने दो का ये गीत। साथियों, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अभिलाषा का ये गीत। लिखा था गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था एस डी वर्मन ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

ਕਦਰਾਂ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे आया सामन झूमके का फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी साथियों की आवाज़ें थी। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और अब साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गीत। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, तुम बिन एक दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल

आपने सुना भी आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म मजबूर के इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये गीतांजलि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: प्रस्तुत है ये स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम. आज का विषय है जल जनित रोग से बचाव के उपाय, और डॉक्टर नीता जैन से इस विषय पर भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह.

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक

0: स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, बरसात के मौसम में पानी से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें परेशान करती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे आसपास, चाहे हम पानी पी रहे हों, चाहे आसपास पानी भर गया हो, जिनसे बीमारी होने की संभावना हो सकती है, इस पर आज हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता जैन साहब, जो वरिष्ठ परामर्शदाता हैं जिला अस्पताल हाथरस में, साथ ही साथ इस रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आज इनके अनुभव से हम जानेंगे कि जो वाटरबोन डिजीज है, यानी पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं, पानी से मतलब प्रदूषित पानी से, चाहे वो पी ले या हमारे आसपास खड़ा हुआ हो। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार
1: नमस्कार। बहुत बहुत
0: जी। तो अक्सर बात की जाती है कि जब भी बरसात होती है कि भाई बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, ऐसे रोग हैं जो पानी से होते हैं, तो कई बार
1: बिल्कुल।
0: आदमी को लगता है पानी से कैसे रोग
1: हाँ
0: हो
1: जी,
0: सकते
1: हाँ जी।
0: हैं, तो इसमें थोड़ा सा बताएं कि इसका आशय क्या
1: हाँ,
0: है सामान्य
1: इसका
0: उसमें।
1: आशय यह है कि पानी के द्वारा जो दूषित पानी, जिसको हम कहेंगे कि जो प्रॉपरली ट्रीटेड नहीं है। अब ये दूषित पानी कैसे हुआ? सपोज हमारे ग्रामीण इलाके में, जैसे वहीं पे पानी का टैप लगा हुआ है,
0: हाँ
1: नल
0: हाँ
1: है, और आसपास ही वहीं सीवेज डिस्पोजल है, लेट्रिन भी वहीं पे है, या गंदगी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, या उस पानी के पाइप में कहीं लीकेज है तो भी वहां से इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसा दूषित पानी अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है, हम उसको पी रहे हैं, तो डेफिनेटली कि हमारे अंदर जो है वो संक्रमण होगा। तो उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस जो होते हैं,
0: वो हो
1: वो किसी
0: सकते
1: से भी
0: हैं।
1: इन्फेक्शन, और इससे क्या है, बीमारियां, फिर डेफिनेटली डायरिया, डिसेंट्री है, टाइफॉइड है, कई सारे वाटर बॉर्न डिजीजेस है, वो
0: हो
1: हो
0: सकती है
1: सकते
0: वाले।
1: हैं।
0: तो बरसात के मौसम में ये बात थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा घातक हो जाती है क्योंकि पानी बरसात का जमा हो जाता है,
1: हाँ जी,
0: या पानी होने से जो वहीं से आपने कहा जैसे पानी की लाइन भी गुजर रही है,
1: हाँ
0: लीकेज हो गई, उसमें जो खड़ा हुआ पानी है वो चाहे वो सीवर का
1: हाँ
0: हो चाहे वैसे हो, वो आ गया, नाली का पानी हो गया और संक्रमित हो गया और उसको हम यूज कर रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: अब सावधानी इसमें आ जाती है। सो आपने कहा दो तीन बीमारी ऐसी हैं
1: हाँ
0: जो हो जा सकती है कि हैजा है, उल्टी दस्त है, आपने टाइफाइड की बात की। तो आजकल तो टाइफाइड भी काफी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो
1: हाँ
0: उसके कारण क्या यही
1: हाँ
0: मरीज।
1: दूषित पानी ही सबसे बड़ा इसका एक कारण है, टाइफाइड का, कि अगर आपने गंदा पानी, चाहे वो, अब हम खाना भी संक्रमित हो रहा है जैसे,
0: हाँ
1: तो अगर वो भी कहीं ना कहीं सोर्स है एक टाइफाइड होने के लिए। और दूसरा, पानी पानी तो हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे हैंड हमारे प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है, हाथ है हमारे, तो उसके द्वारा भी हमारे में इन्फेक्शन जा रहा है। पानी हम कैसा पी ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये, कि हम कहाँ का पानी पी रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन जाता है।
0: जी। तो इसमें मतलब बड़े सावधानी की जरूरत है, इसको हम सिर्फ पीने का पानी ना समझे, जो पानी पी रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, कितना शुद्ध है, और उससे होने वाली बीमारियां जैसे आपने कहा कि हो सकती हैं, तो फिर उसके सोर्स और उसके रखरखाव और उसके पीने तक की जो व्यवस्था है उस पर काफी ध्यान देने की
1: काफी
0: जरूरत है।
1: ध्यान देने की जरूरत है हर, मतलब जहां से, जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक है, कि हर लेवल पर हमें ध्यान देना है कि वो पानी हमारे तक, पीने तक आने पर संक्रमित ना होने
0: ना
1: पाए।
0: होने पाए
1: और अगर
0: सही।
1: एक बार हो जा रहा है वो, तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी अगर अच्छा है तो हो सकता है हम बीमार नहीं पड़े, और अगर
0: हाँ
1: हमारा इम्यूनिटी लेवल कम है तो गाए बगाए
0: मतलब
1: बीमार हो
0: बीमार
1: सकते हैं। हाँ
0: पड़
1: जी
0: सकते हैं, तो इस बात पे बहुत सावधानी,
1: बिल्कुल
0: और बरसात के मौसम में ये और बढ़ जाती
1: बढ़
0: है।
1: जाता
0: अच्छा,
1: है।
0: अब जैसे बरसात हुई, पानी भरेगा ही, हमने नालियां साफ नहीं हो रखी बाय द वे, या कोई आसपास

0: सामान्य किसी भी कार्य के लिए कई बार गड्ढा खोद लेते हैं, मिट्टी उठा ली, या कोई काम कंस्ट्रक्शन का हुआ है, अब बंद हो गया, बारिश आई, पानी खड़ा हो गया, तो उस जो खड़ा पानी है जिससे हमारा कोई सरोकार तो नहीं है, लेकिन उस आसपास भरे हुए पानी से और भी खतरे हो जाएंगे,
1: बिल्कुल हो
0: कोई
1: जाएंगे,
0: मच्छर पैदा होंगे,
1: मच्छर पैदा हो जाएंगे,
0: तो
1: तो
0: फिर तो
1: उसकी वजह से मलेरिया भी हो सकता है,
0: मलेरिया हो सकता है, वायरस हो सकता
1: वायरसेस
0: है।
1: की बीमारियां हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, प्रोटोजोअन जो जो छोटे छोटे कीटाणु विषाणु हैं वो सब भी पनपने लग जाएंगे और उसके द्वारा तरह
0: तो
1: तरह की
0: ऐसे
1: बीमारी हो
0: मौसम में
1: जाएंगी।
0: जैसे कहते हैं भाई हमने खाना खाया, अब पेट दर्द हो रहा है, या कई बार उल्टी दस्त भी हो गई,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: उसके कारण भी
1: उसके
0: ये
1: कारण यही है, दूषित खाना, दूषित पानी। अब बाजार में जैसे खाना है, आज भी बरसात हो रही है, लोगों को बड़ा मन करता है कोई खोमचे लगे हुए हैं बाहर और
0: हाँ
1: खुला हुआ खाना खा लिया, पता चल रहा उसमें आलू वगैरह पड़ा हुआ होता है, वो
0: हाँ
1: थोड़ा सा स्टेल हो गया, खराब हो गया, हमने उसी को खा लिया, या वो खुला हुआ है उसके ऊपर मक्खी बैठ गई,
0: मक्खी बैठ
1: तो
0: गई।
1: उसके द्वारा वो दूषित खाना किसी भी तरह से अगर हमारे पेट के अंदर पहुंच गया तो डेफिनेटली हमें बीमार होना है।
0: तो फिर उसे बनाते समय, रखते समय, खाते समय ढक्के भी रखना है
1: बिल्कुल
0: उसको।
1: ढक के, बनाने वाले का भी साफ सफाई का पूरा है, जो बना रहा है उसके लेवल पर भी सफाई का होना है, बहुत जरूरी है कि अगर जो दूषित हाथों से अगर बना है तो वो जो खाने वाला है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, तो बनाने वाला और खाने वाला हर लेवल पर
0: उसके
1: हमें
0: खाने वाले के भी हाथ धुले होने चाहिए,
1: बिल्कुल होना
0: जिन
1: चाहिए,
0: बर्तनों में हम बना रहे हैं खा रहे हैं वो भी साफ
1: वो भी
0: होने
1: साफ
0: चाहिए,
1: होना
0: आसपास
1: चाहिए
0: का परिवेश साफ
1: बिल्कुल।
0: होना। तो हमारे जीवन में जो कहते थे पहले पूजा पाठ बहुत करते थे लोग, आसपास की सफाई है, धूप बत्ती लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, वो सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता था, वो उसके पीछे की जो जो आवश्यकता थी वो ये भी थी कि हमें हेल्दी रहना है,
1: हाँ, हेल्दी रहना
0: उसमें अच्छी सुगंध होगी तो अच्छी तरह के हमारे कीटाणु आएंगे, मक्खी मच्छर थोड़ा दूर जाएंगे,
1: है।
0: तो हेल्दी जो हमारे आसपास के जो जीवाणु हैं उनको पनपाना है, जो हानिकारक हैं उनको
1: उनको
0: रोकना है,
1: रोकना
0: तो
1: है,
0: वहाँ कई सारी चीज़ों के बहुत सारे मायने होते हैं,
1: मायने।
0: तो
1: हाँ
0: उनको हमें छोड़ना नहीं है, उनको
1: बिल्कुल
0: अपनाना है
1: बिल्कुल
0: उसमें।
1: बिल्कुल
0: तो अब और अब इसमें जैसे इनसे बचना है भाई, एक तो ये हो गया कि हम इन्फेक्टेड हो गए, अब इलाज कराना है, लेकिन ना हो उसके लिए क्या फिर वही सावधानी।
1: यही मेन तो इसका सावधानी है, सबसे पहले सबसे बड़ा है कि प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको वो चीज होने ही नहीं देना है जिससे कि आप इन्फेक्ट हो। तो पानी का जो भी सोर्सेज हैं, कंजम्पशन जहां से, मतलब जहां से सोर्स है और आप कंज्यूम कर रहे हैं, हर लेवल पर आपको ये देखना कि इन्फेक्टेड ना होने पाए। अगर आप खाना वो खा रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो खाना प्रोवाइड कर रहा है वो भी साफ होना चाहिए, और आप कंज्यूमर हैं तो आपके में भी सफाई होनी चाहिए। जब ये दोनों लेवल्स में एजेंट होस्ट और का एक ट्रायड होता है, और एनवायरनमेंट का अगर ये कहीं पे भी डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें डिजीज हो जाती है। तो एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए, और होस्ट हम हुए, एजेंट वो हुआ जो वो पनप रहा है, तो ये ट्रायड जो है इसमें एक बैलेंस होना चाहिए।
0: अब बहुत सारी चीज़ें जैसे हम खाने पीने की बाजार से ला रहे हैं, अब आसपास वो जिस खेत से आ रही है वहाँ बरसात का पानी भरा है,
1: बिल्कुल
0: वहाँ जहाँ हम बेच रहे हैं कई बार वहाँ भी वो हो रहा होता है, तो वहाँ भी फिर वो ही है कि वो भले ही सब्जी है लेकिन दूषित पानी से
1: हाँ
0: के माध्यम से आ रही है, तो हम
1: हाँ
0: पहले उसको फिर धो
1: अच्छे
0: लें।
1: धोकर, है ना, अच्छे से धुली हुई सब्जी हो, और कच्चा, आज का जैसे बरसात का सीजन है तो मैं तो एडवाइस करूंगी कोई भी चीज ऐसे रॉ नहीं खानी चाहिए। तो एक तो अच्छे से धो लिया जाए, फिर सब्जियां या जो नॉनवेज खाता है, मीट अंडे खाता है, तो उसको अच्छे से पका लिया जाए। अगर सेमी कुक्ड फूड है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें इन्फेक्शन रह जाते हैं, उसमें बैक्टीरियाज पनप रहे होते हैं, तो उसको अच्छे से पहले आप पका लेंगे खाने को, उसके बाद ही आप कंज्यूम करेंगे। और आज के सीजन में बासी खाना, रखा हुआ खाना, वो भी नहीं कंज्यूम करना है क्योंकि
0: जी
1: वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो
0: आप
1: कुछ
0: कितना
1: चीज,
0: भी कई बार हम कहते हैं कि भाई फ्रिज में है रखा
1: हाँ
0: हुआ
1: हाँ
0: है, लेकिन हम कोशिश करें कि ताजा पका
1: ताजा
0: हुआ ही
1: खाना, खान कम बनाए लेकिन
0: खाएं।
1: ताजा खाना कंज्यूम किया जाए, फल सब्जियां जो भी हैं पहले उनको अच्छे से धोया जाए फिर उसको खाया जाए। और उसके बाद में मेडिसिंस की बात आती है कि जहां अगर इसके बाद भी प्रिवेंशन तो ये हुआ, फिर क्योर के लिए हमें कुछ मेडिसिंस हैं कि नहीं ठीक हो रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास
0: डॉक्टर के
1: जाके,
0: पास
1: क्योंकि
0: जाए।
1: कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन भी हो जाती है, तो उस केस में कि डॉक्टर को सलाह जरूरी होती है और टाइमली ट्रीटमेंट भी चाहिए, चाहे उसमें एंटीबायोटिक या आईवी फ्लूड्स, अगर बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो रहे हैं जो क्योर
0: हाँ,
1: नहीं हो रहा है।
0: मतलब वेट ना करें,
1: हाँ
0: कम से कम
1: जी
0: एक अच्छे डॉक्टर की सलाह
1: सलाह
0: लें और उसको हल्के में ना लें कि भाई
1: बिल्कुल
0: सिर्फ दर्द हो रहा है, वो कई बार थोड़ा सा

0: लिए घातक भी हो
1: घातक
0: सकता
1: भी
0: है,
1: हो जाता
0: परेशानी का कारण भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि ये जो वाटरबोर्न डिजीज़ है उन पे ये तो हमें देखना ही, कि पानी के सोर्स को देखें, पानी के रखरखाव को
1: है।
0: देखें, पीने के तरीके को देखें, अपने व्यवहार को भी देखें, और साथ ही साथ जो बीमारियां हो सकती हैं जैसे अपने का टाइफाइड
1: टाइफाइड
0: है
1: हुआ है,
0: या
1: हेपेटाइटिस है, पीलिया
0: हाँ
1: भी बड़ा
0: पीली पीलिया इस समय
1: बहुत ज्यादा होता
0: हुआ
1: है।
0: उसमें।
1: फिर बाकी तो डायरिया, डिसेंट्री है, कभी कभी तो
0: हाँ
1: खूनी पेचेस हो रही है।
0: खूनी पेचिस हो
1: हाँ, तो
0: रही है,
1: ये
0: तो
1: सारी जल
0: बहुत
1: जनित
0: सारी
1: है
0: हैं जो मतलब हम
1: मैं।
0: उनको लाइट नहीं ले सकते,
1: हाँ जी,
0: तो उन पर ध्यान रखना है, और जब भी ऐसा लगे तो तुरंत एक अच्छे डॉक्टर की सलाह हमको जरूर लेनी
1: बिल्कुल।
0: चाहिए। इसमें कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगे
1: मैं
0: मैडम?
1: बस यही, अभी जैसे अभी इतना बात कर रही थी कि भाई इसको हल्के में ना ले, और टाइमली अपना साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और हैंड वॉश, हर चीज का सबसे ज्यादा गुरु हैंड वॉश है, कि
0: ना
1: जो भी आप खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं, हर चीज में आप हैंड वॉश करिएगा, तो उससे 99% बीमारी हमारी दूर भागेंगी।
0: जी, तो श्रोता बंधु डॉक्टर साहब कह रही थी कि पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, पानी के आसपास ही हमारा जीवन चलता है, पानी पीना है, पानी हमको खाने में यूज करना है, लेकिन पानी कितना घातक भी हो सकता है अगर वो शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, अगर हमने उसे ठीक सोर्स से नहीं लिया है। तो कितनी सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि टाइफाइड है, पीलिया है आपका, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, पेचिस हो सकती है, तो इन पर भी हमें सावधानी रखनी है। डॉक्टर साहब आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये इस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर निदा जैन से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता। विषय था जल जनित रोग से बचाव के उपाय।

समय से बढ़कर कोई भी कीमती चीज नहीं होती, अतः जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 जुलाई को बांदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनपद को 710 करोड़ की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने शहर के कालूकुआं चौराहे में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बांदा और बबेरू विधानसभा की 229 परियोजनाओं की शिलान्यास के लिए मुझे इस वीरांगना की धरती में आने का सौभाग्य मिला है। अब मुझे बुंदेलखंड आने में गर्व महसूस होता है। आज बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड का पिछड़ापन यहाँ के पलायन का कारण था। बुंदेलखंड में पहले न तो कनेक्टिविटी थी, न सिंचाई और न ही पेयजल की व्यवस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अब बुंदेलखंड को बेहतरीन कनेक्टिविटी से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दे रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा में खेत बचाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। विगत 2 जुलाई को कृषि मंत्री ने बांदा में मंडल के चारों जनपदों से आए हुए किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि मंत्री ने किसानों से कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को लगाने की अपील की, साथ ही रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल

0: की बजाय प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए कहा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा कि सरकार मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
1: योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
0: जनपद में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें इन बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। संचारी रोग अभियान के बारे में जनपद के CMO डॉक्टर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि संचारी रोग अभियान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है।
2: संचारी रोग अभियान जो है एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है और वर्ष में ये 3 बार 3 राउंड होते हैं। वर्तमान में अब जो सेकंड राउंड हो रहा है इस वर्ष का वो जुलाई है, तो जुलाई में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना होता है। इसमें 13 हमारे जो डिपार्टमेंट है अलग, वो 13 डिपार्टमेंट का इसमें सहयोग रहता है और हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं इस पर्पज से कि साफ सफाई रहे, कहीं पर भी पानी का भराव न हो ताकि मक्खी मच्छर वहां पर पनपे।
0: इसमें स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसके साथ ही अन्य विभाग भी सहायक विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभियान के तहत आशा और आंगनवाड़ी घर घर पहुंचकर इन रोगों के फैलने के कारणों और उनसे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। जनपद के रेल यात्रियों के लिए अब दक्षिण भारत का सफर आसान होगा। उत्तर मध्य रेलवे ने 5 अगस्त से प्रयागराज और यशवंतपुर के बीच एक नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे अब बांदा से दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने के लिए सीधे ट्रेन उपलब्ध होगी। प्रयागराज यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को प्रयागराज से यशवंतपुर के लिए रवाना होगी, जो बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा, महोबा और खजुराहो होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी। ट्रेन बुधवार को शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होकर रात्रि 11:10 पर बांदा पहुंचेगी। ट्रेन में कुल 23 ICF कोच होंगे, जिसमें 7 सामान, 11 स्लीपर, 2 AC थर्ड, 1 AC सेकंड और SRRD कोच भी शामिल रहेंगे। दक्षिण भारत के लिए जनपद से सीधे ट्रेन मिलने से यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी प्रसन्नता है, क्योंकि बांदा से बेंगलुरु जाने वाले यात्री काफी हैं, जिनको पहले यहाँ से कोई सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों को दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए बहुत ज्यादा समस्या होती थी।
3: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
4: जनपद में विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगम लाल ने की। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिवम यादव ने बताया कि मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के अंतर्गत विद्यालयी वाहनों का व्यापक निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 65 विद्यालयी वाहनों का चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 43 वाहनों को सीज किया गया। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी विद्यालय अपने वाहनों में वैध फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और GPS जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ब्लैक स्पॉट्स के सुधार, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरलोडिंग एवं ओवर स्पीडिंग पर प्रभावी नियंत्रण और जन जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए। जनपद में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुंहपका यानी FMD टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से मोबाइल टीकाकरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया। ये अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 5,70,000 पशुओं का निःशुल्क

0: टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के लिए 20 मोबाइल वाहन और 32 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें गठित की गई हैं, जो गांव-गांव और घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण के साथ जियो टैगिंग और पोर्टल पर फोटो अपलोड की व्यवस्था भी की गई है, जिससे अभियान की निगरानी प्रभावी ढंग से हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और स्वस्थ पशु ही किसानों की समृद्धि का आधार है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने सभी पात्र पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी शर्मा ने बताया कि खुरपका मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन प्रभावित होता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय पर टीकाकरण ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत और यातायात व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को यात्रा मार्गों पर विद्युत पोलों की सुरक्षा, खुले ट्रांसफार्मर की बैरिकेटिंग और झूलते बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को मार्गों की मरम्मत और झाड़ियों की सफाई, जबकि नगर निकायों को स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एटा में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर रोजगार मेला, तकनीकी प्रदर्शनी और कौशल विकास पर आधारित तमाम गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ना था। कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों की ओर से तैयार किए गए तकनीकी मॉडल और जॉब वर्क प्रदर्शित किए गए, जिनकी अतिथियों ने सराहना की। सफल प्रशिक्षुओं, उद्यमियों और संस्थान के सेवानिवृत्त कार्यदेशक को भी सम्मानित किया गया। बृहद पौधारोपण अभियान के अंतर्गत जनपद के विद्यालयों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संस्थानों, सड़कों के किनारे, नहरों और तालाबों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं लाभार्थियों को सहजन यानी मोरिंगा के पौधे वितरित किए गए, साथ ही ढाक और पलाश के पौधे भेंट कर उनके संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ और हरित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस बार जनपद में तय लक्ष्य 31,36,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण किया गया है।
1: हरियाली का कवर यहाँ बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में यहाँ पर लक्ष्य वृक्षारोपण का था 31,36,400 और जिसके सापेक्ष 32,94,000 पौधरोपण हुआ है। शासन स्तर से भी और बड़े बड़े पैचेस को हम लोगों ने प्राथमिकता दिया। हर ब्लॉक में 15 से 20 पैचेस ब्लॉक्स बड़े थे, ब्लॉक प्लांटेशन जहाँ पर अच्छा हुआ है और हम लोगों ने तरह तरह के जैसे कपी वन करके प्लांटेशन कराए गए हैं।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: साथियों, कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत आइए सुनते हैं जानकारी वंदना शर्मा से। विषय है घरेलू रसायनों का प्रयोग।
3: पदार्थों का समूह जो विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है और भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कई उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थ बनाते हैं। रासायनिक प्राकृतिक व मानव निर्मित होते हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से निश्चित तौर पर पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। रसायनों के द्वारा पर्यावरण पर

वाले ये प्रभाव कभी बेहद उपयोगी सिद्ध होते हैं और कभी ये घातक रूप से प्रस्तुत होकर जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। आज रसायन हमारे दैनिक जीवन की जरूरत है। वे रोजमर्रा के वातावरण में हमारे आसपास की लगभग हर चीज में मौजूद हैं। रसायन भोजन, कपड़े, फर्नीचर, स्वच्छ लेख, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि कई पदार्थों में पाए जाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन को एक अलग ना करने वाला हिस्सा बन चुके हैं। दैनिक जीवन में रसायनों का प्रयोग इस कदर बढ़ रहा है कि आज हर दिन 3 नए रसायन घरेलू उत्पादों में शामिल होकर एक नए पदार्थ के रूप में बाजार में उपलब्ध हो जाता है। आज बढ़ते रसायनों के प्रयोग से मानव प्रजाति पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रसायनों ने मानव

खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि रसायनों ने मानव के रहने के घर पर्यावरण को विकृत कर दिया है। मानव ही इन रसायनों से प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि संपूर्ण जीव जगत इसके प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। आज कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करता। हमारा जीवन रसायनों के प्रयोग पर निर्भर होता जा रहा है। आज लगभग हर चीज में विषाक्त पदार्थों और खतरनाक रसायनों को पाया जाना आम बात हो गई है, जैसे हमारे भोजन, हमारे कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन आदि। अनेक दैनिक जीवन के ऐसे मूलभूत पदार्थ हैं जो रसायनों से निर्मित हैं और इनके बिना जीवन की कल्पना करना ही संभव नहीं है। दैनिक जीवन में सवेरे उठने के साथ ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल रसायन के प्रयोग का एक पहला उदाहरण है। पश्चात साबुन, शैम्पू इत्यादि सारी वस्तुएं जो नाना प्रकार के रसायनों से निर्मित हैं, उनका उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। दैनिक दिनचर्या से हमारे विविध प्रकार के रसायनों का प्रयोग होता है और हम उनके संपर्क में आते हैं, और इन सभी के सामूहिक इस्तेमाल से हमारी दैनिक दिनचर्या पूर्ण होती है, जिसके अंतर्गत सवेरे उठने से लेकर रात को सोने के बीच के सारे क्रियाकलाप शामिल हैं। रसायनों का प्रयोग अपशिष्ट उत्पादित करता है। ये घातक विषैले हानिकारक रसायन प्रकृति को विकृत करने का कार्य करते हैं। निरंतर इनके प्रयोग से पर्यावरण में मौजूद अपघटक धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, और इसी के साथ ये उन जीवों पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव डालते हैं जो मानव प्रजाति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जीवाणुओं को शामिल कर सकते हैं जो मानव प्रजाति के लिए लाभदायक हैं। हानिकारक रसायनों के दैनिक प्रयोग से इनके अपशिष्ट से वानस्पतिक जगत भी अछूता नहीं है। इनके प्रभावों से हमें स्वयं को बचाकर रखना है। जितना कम हो रसायनों का प्रयोग करना है, वह जीवन को प्रकृति की तरफ मोड़कर पर्यावरण को सुरक्षित कर स्वयं को सुरक्षित करना है। अंत में यही कहना है कि बढ़ते रसायनों के प्रयोग से हम अपने पर्यावरण को विनाश के कगार पर ले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारी दैनिक दिनचर्या सरल हो, जिसमें रसायनों का प्रयोग न्यूनतम हो, तभी हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर खुद को सुरक्षित कर देते हैं। चंद कविता की लाइनों में मैं कहना चाहूंगी, नए युग में विचारों की नई गंगा बहाओ तुम, कि सब कुछ जो बदल दे ऐसे तूफान में नहाओ तुम। अगर तुम ठान लो तो आंधियों को मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी वंदना शर्मा से। विषय था घरेलू रसायनों का प्रयोग। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। गांधी चर्चा में आइए सुनते हैं आज चित्रकला विषय पर गांधी जी के विचार।

0: सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग हैं। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो ये राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे दो संस्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो एक साल नष्ट हुआ था उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगती थी। मेरी समझ में कुछ ना आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से ही शुरू होती थी। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही, तिस पर मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझा कर पढ़ाते थे पर मैं कुछ समझ नहीं पाता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी ये भी सोचता कि एक साल में दो कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी उनकी भी लाज जाती। इस भय से नीचे जाने का विचार तो मैंने छोड़ ही दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं मुश्किल से 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है, इसमें कठिनाई क्या है। उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात तो थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता है। ये विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे, विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, ये तो समझ कि तू किनका लड़का है, क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता, मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूं, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे, तुझे यूं हारना नहीं चाहिए, तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीख सका उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में मैं जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता।
1: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको

0: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
1: दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया भी। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है क्या? जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की उसे मैं आज तक नहीं कर

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा के अंतर्गत चित्रकला विषय पर गांधी जी के विचार।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरी उड़ान।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में कुछ गीत और भजन। आज कलाकार हैं माधुरी अग्रवाल। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। आइए सुनते हैं सूरदास जी का ये लिखा हुआ भजन।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, आपने सुना अभी क्रांति फिल्म के इस गीत को नितिन मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार संतोष आनंद थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना अभी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में हम शक्ल फिल्म के इस गीत को। और आइए आप सुनते हैं ये अगला गीत।

आपने सुना भी मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को लता मंगेशकर साथियों की आवाज़ में। गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार मदन मोहन ने और फिल्म थी चिराग। अब साथियों आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे ब्रजभूमि फिल्म के गीत को चंद्रानी मुखर्जी और सुशील कुमार के युगल स्वरों में। ये गीत था, गीत संगीत रविंद्र जैन का। साथियों, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से।

अंदाज़ फिल्म के गीत को अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में लिखा था समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

बड़ा दिन फिल्म से ये गीत था। जरा जावेद अख्तर की इस रचना को संगीत दिया था जतिन ललित ने। साथियों, आप आनंद ले रहे हैं इस वक्त फिल्म संगीत का आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

कुमार शानू, लता मंगेशकर के आवाज़ों में आपने सुना अभी जब प्यार किसी से होता है फिल्म के गीत को। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा था, जतिन ललित का संगीत। और अब साथियों आइए सुनते हैं।

साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म जब तक है जान से था, राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज में। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और संगीत AR रहमान का था। आइए आप सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आपने सुना भी बंजारा फिल्म के गीत को मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ों में। साथियों, आज का यह कार्यक्रम इसी गीत के साथ यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 11 बजने को है, अब समय हो चुका है कार्यक्रम फोन इन का, यानी हेलो आकाशवाणी। तो आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं संजय सारस्वत। कहाँ से चला गया?

हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो
1: हेलो सरस्वत जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं जवाहर सिंह, गांव साहेबपुर, तहसील नंदोई, जिला भरतपुर, राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ सर।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर, बहुत बहुत।
1: बहुत दिन से प्रयास में था सरस्वत जी से, सब मेनू पर वो मिल ही नहीं पा रहा था वो।
0: लाइन व्यस्त
1: हाँ
0: होती है सर इस समय थोड़ी।
1: हाँ सही है सर। अरे एक फिल्म का गाना सुनना था सर मुझे आपसे,
0: जी बताएं।
1: आई मिलन की वेला, टाइटल
0: जी, कौन सा गाना?
1: सॉन्ग है आई मिलन की
0: ए
1: वेला
0: बेला
1: देखो।
0: देखो
1: हाँ
0: आई रे। जी बिल्कुल, आपके यहाँ बारिश हो गई कि नहीं हो गई सर अभी?
1: बारिश चालू है सर, बारिश हो रही है
0: अच्छा, आप
1: तो
0: तो
1: सुन
0: राहत
1: रही
0: हो
1: है ना।
0: गई फसलों को।

0: मुश्किल से किसान की दुनिया है।
1: अच्छा
0: बरसात हो रही है तो।
1: प्रभु सुनते हैं, देर है अंधेर नहीं है सर।
0: अच्छी बरसात हो रही है।
1: जवाहर सिंह जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सर्वश्रेष्ठ प्यार भरा नमस्कार। सर,
0: नमस्कार।
1: आपका नियमित श्रोता आगरा कंदौली से राजू लवानिया बोल रहा हूँ, ब्रज रेडियो श्रोता मित्र।
0: स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसी है हमारी हेलो आकाशवाणी टीम और हमारे सारस्वत जी?
0: बहुत अच्छे हैं सब लोग सर, आपकी दुआओं से, प्रभु के आशीर्वाद से।
1: सर, कहीं नजर ना लगे तो एक बात कहनी थी।
0: बताइए
1: आजकल जो आवाज की क्वालिटी है आपकी,
0: जी।
1: वो एकदम A1 क्लास आ रही है सर। बिल्कुल,
0: चलिए, ये तो तकनीकी टीम को बधाई देनी चाहिए हम लोगों को।
1: बिल्कुल सर, सब लोगों को बधाई है, पूरी आकाशवाणी टीम को बधाई है, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है आवाज की। जो रिकॉर्डिंग कराने का जो आनंद दूना हो गया है अब, क्योंकि पहले बहुत डिस्टर्ब आती थी लाइन में,
0: जी।
1: अभी एकदम क्लियर आवाज आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके सबके सहित धन्यवाद करते हैं पूरी आकाशवाणी टीम का।
0: हम तो यही चाहते हैं सर, ऐसे ही अच्छी तरह प्रसारण आपको सुंदर तरीके से मिलता रहे। जी
1: बिल्कुल सर, हमारी भी यही कामना है कि हमारा आकाशवाणी मथुरा, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो और ज्यादा तरक्की करे और ज्यादा उसके गुणवत्ता में सुधार हो, और उसके जो कुछ भी बहुत खामियां हैं उनमें भी सुधार हो, तो और भी
0: बिल्कुल
1: आनंद
0: बिल्कुल,
1: आएगा
0: पूरा
1: सुनने।
0: प्रयास रहेगा सर।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत
0: आज
1: धन्यवाद सर। सर,
0: क्या फरमाइश रहेगी लवनिया साहब कार्यक्रम में?
1: लता मंगेशकर जी की आवाज में गाना है, फिल्म का नाम है मेरे हमसफर,
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं मेरा परदेसी ना आया।
0: सुनवाते हैं लवनिया साहब आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत आभार फोन करने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार, सारी हमारा कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: परम आदरणीय आवाज के और शब्दों के जादूगर संजय सरस्वत साहब को सर सा प्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार और स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत
1: हृदय से धन्यवाद। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ आदरणीय सरस्वत साहब से आकाशवाणी मथुरा वृंदावन पर।
0: कैसे हैं प्रजापति जी?
1: आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है। मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, रेडियो सुनने में रहता व्यस्त हूँ।
0: अब तो मौसम भी सुहावना है काफी।
1: जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहाना है और आषाढ़ के महीने में बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, आकाश में बादल छाए हुए हैं और वर्षा का जब पानी पड़ता है धरती पर तो मौसम खुशगवार हो ही जाता है। कहीं कहीं पानी की समस्याएं हो जाती हैं, कहीं पानी से क्या हो जाती है, कहीं पानी की समस्या होती है, तो इन सब की जो है तो पानी की आवश्यकता तो होती ही है।
0: बिल्कुल, पेड़ पौधों में भी जान आ जाती है इंसानों के साथ साथ।
1: जी सजीव होकर लहलहाने उठते हैं।
0: जी, आज क्या पसंद रहेगी प्रजापति जी हमारे कार्यक्रम में?
1: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर, मुकेश और लता जी ने गीत गाया है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा।
0: सुनवाते हैं सर आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: राधे साहब,
1: कौन बोल रहे हैं सर?
0: आदरणीय सरस्वत साहब को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आपका परिचय जानना चाहते हैं।
0: सर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर। गांव उस पार से काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ सर।
1: जी जी प्रयास करते रहिए, आपकी कोशिश कामयाब हो गई, बधाई आपको बहुत सारी।
0: अरे सर, और सर आप कैसे सर? हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: आशीर्वाद है प्रभु का और आपकी दुआएं हैं, सब लोग अच्छे हैं।
0: कन्हैया जी की कृपा होनी चाहिए सर, हम तो आपके स्वास्थ्य की कामना करते सर भगवान से।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए।
0: और सर अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा बरसात का हो गया सर,
1: जी
0: तो हम तो ये कहते सर ये वर्षा हो रही है तब थोड़ा पेड़ वेड़ लगाए सर अपने अपने खेतों पे, खलिहान पे, खाली
1: जी
0: जमीनों
1: जी
0: पर, जिससे कि मतलब सीरक हो जाए आगे के लिए, तो बैठे उसमें जा करके सर।
1: बिल्कुल, वातावरण पर्यावरण सही रखने के लिए पेड़ लगाना सबसे जरूरी है सर, और
0: जी
1: बरसात
0: जी
1: के मौसम में तो बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी पेड़ों की
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: बढ़वार
0: देखभाल
1: होती है।
0: जी सर, देखभाल भी करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, उनकी देखभाल भी करनी चाहिए, केवल पौधे रोप के ही काम नहीं चल जाता,
0: नहीं,
1: उनका
0: देखना
1: ख्याल भी
0: पड़ता है
1: रखना
0: सर,
1: पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, जब बड़ा हो जाए तो अपना तो सीरक हो ही जाता।
1: बड़ी अच्छी सलाह दी है यादराम जी आपने, अच्छी बात है। आज बताइए क्या फरमाइश है हमारे कार्यक्रम में।
0: सर जी हमारी एक फरमाइश रहेगी, सैया जी से वादा किया था ना, जो गरीती में बिछुआ ने डंक मारा, हाय राम।
1: सुनवाते हैं यादराम जी आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
0: नमस्कार सर, मेरा कॉल शामिल करने के लिए और कॉल उठाने के लिए सर धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: राधे राधे।

0: हेलो,
1: आकाशवाणी।
0: नमस्कार।
1: वाह वाह, सारस्वत सुभाष गर्ग का आनंद में मंगल में नमस्कार।
0: आपका बहुत स्वागत है। कहाँ
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोई बता दे दिल है कहाँ और क्यों होता है दर्द वहाँ। तीर चला के ये तो न पूछो कि दिल है कहाँ और दर्द कहाँ।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छी लाइनें सुनाई सर।
1: अरे वाह, जो भी सीखा है आप लोगों से सीखा है।
0: कैसे हैं गर्ग साहब?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं।
0: जी,
1: आज एक गाना सुनने की ख्वाहिश लेकर आए हैं,
0: बताएं।
1: आप इजाजत दे तो दो लाइन सुना दूं। जी,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: फिल्म का नाम है तलाश।
0: जी।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने डाला फिर से तो फरमाना, और नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना।
0: बिल्कुल गर्ग साहब, आपकी पसंद का गाना बहुत ही अच्छा है, सुनवाते हैं आपको ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी आपको भी साधुवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है गैर फिल्मी भक्ति संगीत

आइए आनंद लेते हैं भक्ति संगीत का। जहां प्रेम है वहां राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण स्वयं है, और जहां राधा कृष्ण है वहां जीवन मधुर संगीत बन जाता है।

गुलजार की शब्द रचना को अभी आपने सुना फिल्म वीर में। इस गीत को अपने सुर दिए रेखा भारद्वाज, तोशी साबरी, शारिफ साबरी, शबाब साबरी ने। संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। जीवन में जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका सहारा प्रभु होते हैं। कृष्ण पर विश्वास रखो, वो आपके हर दुख दूर करेंगे।

ये गीत अभी हमने लिया था फिल्म हम दोनों से। इस गीत के शब्द रचना साहिर की थी, संगीतबद्ध किया था जयदेव ने और सुरों में पिरोया था लता मंगेशकर ने।

अभी आपने सुना आशा भोसले नरेंद्र चंचल और साथियों के सुरों को फिल्म अवतार में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत बत किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर के गाए राम तेरी गंगा मैली फिल्म के इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण को अब हम यही विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए पेश है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी आरजे मित्र चंद्रा खत्री। स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। संदेश पहुंच चुके हैं हम तक, तो आइए शामिल करते हैं मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना एंड निवान को आदर्श नगर मालोट से। मैसेज लिख भेजा है पट्टी बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी ने। जिला गाजीपुर से जुड़ चुके हैं प्रतीक, श्रीमती रोशनी एंड प्रांजल। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, आप सभी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बुल्दाना से नरेंद्र, ज्योति, आकांक्षा, आकाश, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम में। लालगिरी हेमलता हिना हर्षित खुशी श्री गंगानगर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, आप सभी सीतामढ़ी से जुड़ चुके हैं। बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, मोहिनी, कल्पित, रमेश गर्वी एंड बेबी बॉय हिमांश जोधपुर राजस्थान से कार्यक्रम सुन रहे हैं। नारायण, दयानंद, ओमकार एंड साईं गायकवाड, आप सभी हमसे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। कल्लौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कार्यक्रम सुन रहे हैं। पंजाब से जुड़ चुके हैं गुरदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशबद। मुकेश, गौरव एंड गरिमा छत्तीसगढ़ के श्रोता।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं गंज डुंडवारा से, मोहम्मद कलीम अंसारी, सहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान और मोहम्मद उस्मान। छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश। इसी के साथ हमसे जुड़ रहे हैं पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और पूरा ही खुश दिल परिवार। शहर पंजाब से झूमता हुआ ये परिवार हमसे जुड़ चुका है। उत्तर प्रदेश से राजेश, प्रीति, कार्तिक और शिव मंदिर हकीकत पुरामऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू। अगले श्रोता सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्मी, मोहिनी, बलबीर, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, आप सभी दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रत्येक, तरुण, जयनारायण, रमेश चंद्र, आप सभी बिलाड़ा राजस्थान से हैं। रीटा, रजत, बिट्टू, मयंक, सब्जी मंडी जज्जर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कोशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से है प्रकाश भारती, जानवी, वैष्णवी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। राहुल, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी, आप सभी शाहूनगर यवतमाल से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनिया, आप सभी बैडी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम सुन रहे हैं। अजय, करिश्मा, अविका, साइशा, आप पुनावले से हैं। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू एंड अर्चना। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, आप लिख रहे हैं कि आपकी पेशकश सुपर डुपर, थैंक यू वेरी मच। श्वेता, किशु, तासू,

नव सत्यम। उत्तम कुमार भगत झारखंड से जुड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं शिव गांव से श्रीराम, उषा कोपर गांव से सुरेश और वर्षा का। इसी के साथ बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक, समर्थ और शौर्य। सभी श्रोता हमसे जुड़ जाते हैं, बहुत दूर दूर से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। डॉक्टर रमेश, गीता रानी, गगनदीप आरजू पटेल नगर मालूट से हमसे जुड़ रहे हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीवी कुल थे। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु, संस्कृति पौरुष, आप सभी बेंगलुरु से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। रामगढ़ से महेंद्र एंड कुलदीप जुड़ चुके हैं। तेलंगाना से कस्तूरी और वुमा देवी, पृथ्वी नारायणा, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। भगवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी, समर्थ एंड सानिका महाराष्ट्र के श्रोता हैं। पंजाब से मिंटू, पिंकी, आरती, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है राजस्थान से दातार सिंह शेखावत ने, संगीता, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत ने, संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत एंड भरत मक्कर, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा, आजमीन गुड़िया, आप सभी तेलंगाना बांगोर से हमसे जुड़ रहे हैं। और जो फरमाइश आपने लिख भेजी है, आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस से। अगले श्रोता जुड़ रहे हैं आशा नारंग, सोनाली सुरेश सहारनपुर से।

कुमार और पुष्पेंद्र, हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, रामेकर परिवार पूरा ही हमारा कार्यक्रम सुन रहा है महाराष्ट्र से, गुरमीत साउथ एक्सटेंशन से आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। रेशमा अंसारी सना खान और शकीला दिल्ली से, डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, अंतरा देवी, प्रभा मिश्र देवी, रमेश कुमार साहू छत्तीसगढ़ के, श्रोता सुधा, काजल, मीरा, सोनाली आप बिहार रेडियो लिसनर क्लब से जुड़ रहे हैं, राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव दाल मंडी से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका आप सभी महाराष्ट्र के श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। नसरीन परवीन, आमना और बीबी अनुश्री, आसमा परवीन डुमराओ से, राजेंद्र, मलकीत, आरती, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य हमसे जुड़ चुके हैं हरियाणा से, आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। सुनील, कमल, दीपिका, गव्या भाई, सुच्चा सिंह, विनोदपुरी, जयपाल यादव आप पंजाब के श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा शाहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, शिपा, कपिल, जीपा, ईशान और पूजा परिहार आप सभी का शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

शाहदरा दिल्ली से तुलसी, वीना आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना, केशुरी धान खुराना, आप सभी का शुक्रिया।

ताऊं कुमार, आरती कुमारी, विद्या कुमारी, आराध्या कुमारी, कुमकुम गुड़िया, विजय सुरलकर महाराष्ट्र से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि चंद्रा दीदी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हो रही है, मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप सुनते हैं और फिर अपना जो विचार है वो भी साझा कर रहे हैं। तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। छन्नूलाल, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, छत्तीसगढ़ के श्रोता हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। नबी हसन, सहनाज एंड नवेद, सुहेल, अनम, रसीद, आप सभी मारहरा दरवाजा ईटा से हैं, सिद्धपुरा से टाउन से जुबेर अली खान, सबिहा अंजुमन खान, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं। विनोदपुरी, बीपी, पंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रामा, पालीपुरी, सुनील, वीकेपुरी, विनोदपुरी, आप सभी लुधियाना से हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर लीजिए प्रस्तुत है ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरप्रसाद राजपूत की गाई लावनी।

उड़ जाए ना मेरी नाव प्रभु। अरे उड़ जाए ना मेरी नाव प्रभु, ठप होए मेरे सब काज सुनो, और परिवार को

करके दर्शन मनु भयो मगन प्रभु पल्ली पारी उतारू में पर बिन धोए चरण महाराज सुनो नहीं नवका में बैठारू में बिन धोए चरण

सुन कर रघुवर केवट की विनय सुन कर रघुवर अब मंद मंद मुस्कान लगे मन मुदित भय।

सब अपने मनोहर सान लगे, केवट पे नहीं कछु भार पड़ो, व्यापार बहुत आसान लगे। केवट पे नहीं कछु भार पड़ो, उस पार बहुत आसान लगे। और मुई आज मिलो शुभ दिन भगवन, मुई आज मिलो शुभ दिन भगवन, मुई आज मिलो।

पहुंचे जब पल्ली पार प्रभु, मन चिंतित बारंबार सुनो कहते मैं हम या

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा और वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं हरि प्रसाद राजपूत के गाए लावनी का।

रिम झिम में हाव बरसे, घटा उठी घन घोर। रिम झिम में हाव बरसे, घटा

रिम झिम रिम झिम मेहा बरसे घटा उठी घन घोर मेरी बहना। रिम झिम रिम झिम मेहा बरसे घटा।

सही न जाए बिरह में धड़क रही है छाती मेरी बहना, मुँह पे सही न जाए बिरह में धड़क रही है छाती, गिन गिन तारे रतियां काटूं याद बहुत आती।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: FM 102.2 MHz पर अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम में। हरिप्रसाद राजपूत की गई लावनी गा।

मिलजुल के गली की संग सखी, मिलजुल के गली की संग सखी, मिलजुल के गली की संग सखी।

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिप्रसाद राजपूत की गई लावनी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल माफ करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार

0: में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिज्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बर्ब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुन सकेंगे रात 10 बजे से। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। किसान भाई और बहनों के लिए ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा 6:15। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा पशुपालन की आवश्यकता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड। इसी के साथ एक और चर्चा आप सुनेंगे प्राकृतिक खेती समय की मांग। इसी कार्यक्रम में होगी भेंट वार्ता, विषय रहेगा धान में फसल सुरक्षा। वार्ताकार होंगे सुधीर अग्रवाल। आपसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। बहनों के लिए कार्यक्रम लेकर आएंगे वनिता लोग दोपहर 1:15 पर। इस कार्यक्रम में सुनेगा पर्यावरण वार्ता, विषय लेकर आएंगे पॉलिथीन का प्रयोग और उसके दुष्परिणाम। इस विषय पर जानकारी देंगी उर्मिला शर्मा।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे हास्य वार्ता। शीर्षक रहेगा भगवान बचाए ऐसे जीजंते। वार्ताकार होंगे मनमोहन गुप्ता। अपनी सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। इस कार्यक्रम में आज की बात क्रम में आज के विषय लेकर आएंगे समय का सदुपयोग करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसी के साथ होगी वार्ता, विषय रहेगा समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार होंगी बीना शर्मा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग दोपहर 2:30 से प्रसारित किया जाएगा।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा, संध्या 7:31। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे।

0: अभी तक आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आइए अब करते हैं अपने देश को नमन।

0: समित सुरों में अभी आपने सुना देशगान।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक।

तन हो स्वस्थ और मन हो सुंदर, तन हो स्वस्थ और मन हो सुंदर, चेहरे पर मुस्कान का सागर हो, यही है असली रूप की परिभाषा, जहां स्वास्थ्य के संग आत्मविश्वास का डेरा हो। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ हमारी प्यारी प्यारी बहनों को, सखियों को, आपकी बहन सखी सहेली रेशमा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक में। और हमारी बहनें कैसी हैं, उम्मीद करते हैं अच्छी ही होंगी, खुश होंगी और स्वस्थ होंगी। बहनों, हमारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बहनें स्वस्थ होंगी तभी तो कुछ कर पाएंगी, यानी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको हम बखूबी निभा पाएंगे। इसीलिए बहनों, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, चाहे स्वास्थ्य की देखभाल में त्वचा की ही बात क्यों ना हो। बहनों, जब हमारी त्वचा स्वस्थ होगी तो जायज सी बात है कि हम बहनें खुद ब खुद सुंदर भी दिखेंगी। और जब बहनें सुंदर दिखती हैं तो अपने आप ही आत्मविश्वास से भर जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य सुंदरता और आत्मविश्वास का गहरा नाता है। असली खूबसूरती बाहरी रंग रूप से नहीं, बल्कि बहनों भीतर की सेहत और खुद पर अटूट विश्वास से झलकती है। तभी तो कहा जाता है, स्वस्थ त्वचा विश्वास की छांव, हर कदम पर आत्मविश्वास का भाव। यानी सुंदरता का सही अर्थ है स्वस्थ त्वचा और आत्मविश्वास। स्वस्थ त्वचा का मतलब है कि हम अपने शरीर को अंदर से पोषक तत्व, सही भोजन और नियमित देखभाल देकर संवारते हैं। जब हमारी त्वचा स्वस्थ होती है तो हमारा आत्मविश्वास भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को लेकर

सहज और खुश महसूस करते रहते हैं, और खुश होते हैं तो आत्मविश्वास भी आता है, और फिर यह आत्मविश्वास सिर्फ बहनों देखने में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के फैसलों, हमारे बोलने के तरीके और हमारे जीवन में उठाए गए कदमों में भी झलकता है। स्वस्थ त्वचा, बढ़े आत्मविश्वास, हर दिन खिलें एक नई मुस्कान। जी बहनों, हमें मुस्कान के साथ हर दिन जीना है और आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना है। हम सभी बहनों को सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है। सभी बहनों का मन करता है कि हम हर पल सुंदर दिखें, और हमें बहनों लगना भी चाहिए। ये अच्छी बात है कि जब आप सुंदर दिखेंगी तो आत्मविश्वास के साथ हर कार्य को कर पाएंगी। तो इसके लिए जरूरी है थोड़ा सा हमें यानी मेहनत भी करनी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं बहनों, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे सही समय पर सोना, उठना, नियमित व्यायाम व योगा करना, संतुलित ताजा व पौष्टिक भोजन लेना, नियमित स्किन केयर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, और साथ ही साथ नकारात्मक विचारों से, और जो नकारात्मक विचार लेने वाले यानी आपको नकारात्मक विचार देते हैं ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है, और साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपनाना है, तथा अपनी पसंद का कोई भी कार्य है आप उसको यानी अपनी पसंद जो है उसका मन नहीं मारना, आप उस कार्य को एक दिन में अवश्य जरूर करें। बस आप इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, फिर देखें कि आप सबसे अलग और अधिक ऊर्जावान, खुश और सुंदरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ तरोताजा महसूस करेंगी, और इस तरह से आप अपने आत्म मूल्य को पहचानते हुए अपने सपनों को पूरा करने में मददगार हो पाएंगी। सुंदरता वो नहीं जो नजर आए हर किसी को, सुंदरता वो नहीं जो नजर आए हर किसी को, सुंदरता वो है जो दिल में उतर जाए। और इन्हीं चंद लाइनों के साथ सुनवाते हैं आपको यह प्यारा सा गीत।

0: बहनों, वर्तमान में हमारी जीवन शैली में पॉलीथीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। तभी तो आज पॉलीथीन का प्रयोग शहर से लेकर गांव तक धड़ल्ले से हो रहा है। बहनों, विडंबना तो इस बात की है कि इसके दुष्प्रभावों को जानते हुए भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो इसलिए हमें पॉलीथीन के उपयोग के साथ साथ उससे क्या क्या हानियां हैं, यानी उससे क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या हो रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो इसी क्रम में हम आपकी जानकारी के लिए लेकर आए हैं भेंट वार्ता, पॉलीथीन का प्रयोग और उसके दुष्परिणाम, विज्ञान वार्ता के अंतर्गत। और आपको जानकारी देंगी उर्मिला शर्मा, और उनसे बातचीत कर रही हैं अंतिम गौतम।
1: मैनू जब भी हम बाजार से कुछ खरीद कर लाते हैं तो चाहे चीज छोटी हो या बड़ी, कपड़े हो या जूते चप्पल, सभी के लिए आजकल पॉलीबैग का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों के लिए भी पॉलीथिन का उपयोग हो रहा है। पॉलीथिन के उपयोग तथा इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसकी अधिक जानकारी के लिए आइए बातचीत करते हैं उर्मिला शर्मा जी से। उर्मिला जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, और आप बताएं कि पॉलीथिन का क्या क्या उपयोग है।
2: देखिए, जैसे हमारी बड़ी बहन ने ये बताया, उसके बारे में कुछ मैं पॉलीथीन के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पॉलीथीन का उपयोग आजकल जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। हम बाजार से जो कुछ भी सामान लेकर आते हैं, वे सभी अधिकांश पॉलीथीन में ही पैक होकर आते हैं। जैसे कि दूध, दही, सब्जी, फल, मसाले आदि सभी पॉलीथीन में ही पैक होकर आते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में पॉलीथीन का बहुत अहम प्रयोग किया जाने लगा है। सभी लोग पॉलीथीन के फायदे के बारे में तो देखते हैं, लेकिन पॉलीथीन से होने वाली हानियों के बारे में नहीं सोचते।
1: उर्मिला जी, जैसा कि आपने हानि शब्द का उपयोग किया, तो पॉलीथीन से क्या हानि भी होती है, और यदि होती है तो इससे क्या क्या हानि होती है?
2: देखिए, इससे अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, जैसे पशु पक्षी आदि। आपने देखा होगा कि अधिकतर घरों में जो पॉलीथीन आती है सड़कों पर फेंक देते हैं
1: जी,
2: और जिससे नालियां रुक जाती हैं, पॉलीथीन गल नहीं पाती है, और उनसे अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
1: नहीं, आपने बताया कि पॉलीथीन में हम ज्यादातर बहनों का आदत भी होती है कि हमने कूड़े करकट या सब्जियों के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पॉलीथीन में भरकर फेंक देते हैं, या सड़े गले फल होते हैं उनको भी पॉलीथीन में फेंक देते हैं।
2: उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, जानवर कभी ये नहीं देखते कि इस पॉलीथीन को हटा दिया जाए या इसको फाड़ दिया जाए। उनको तो जैसा पॉलीथीन में होता है वो वैसा खाद्य सामग्री खाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में पॉलीथीन भी खा जाते हैं।
1: हाँ जी, और इससे अलावा और क्या क्या हानियां हैं?
2: इससे अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सड़कों पर जहाँ नालियों पर डाली जाती है पॉलीथीन, वो नालियां चौक हो जाती हैं, मक्खी मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं।
1: जी हाँ, जब नालियां खुद ही इन पॉलीथीन की वजह से बंद हो जाएंगी तो मच्छर मक्खी और गंदगी फैलने तो नेचुरल ही है। अभी उर्मिला जी, आप सही कह रही थी कि घर घर में पॉलीथीन का उपयोग होता है, और जब पॉलीथीन का उपयोग करने के बाद लोग अक्सर उसमें कूड़ा करकट भरकर पॉलीथीन को घर से बाहर फेंक देते हैं, और जब कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं तो वो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर जाता है नालियों पे, और जिससे नालियां चौक हो जाती हैं, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि ज्यादातर गलियों में, क्योंकि नाली चौक हो जाएंगी तो पानी पानी निकलने लगता है, और सड़कों पे गलियों में पानी भरने की शिकायत ज्यादा हो जाती है, और जिससे बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता दिया जाता है। इसे मक्खी और मच्छर तो होते ही हैं, और जब मक्खी मच्छर होंगे तो साधारण सी बात है कि बहुत सारी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। जैसा कि अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना था कि मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां

0: चल रही हैं। तो इसके अलावा इसके और कौन कौन से दुष्परिणाम हैं, आप और क्या बताना चाहेंगी?
1: देखिए, इसके दुष्परिणाम ये है कि आपने देखा है पॉलिथीन में रखी हुई सामग्रियों का प्रयोग में लाने के बाद सड़क आदि पर फेंक देने से पॉलिथीन को गाय, भैंस, अन्य पशु, घूमने वाले खा जाते हैं।
0: अच्छा, गाय भैंस नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि प्रदूषण के लिए ये किस प्रकार हानिकारक है।
1: आज के जमाने में खाद के साथ पॉलिथीन को भी खेतों में डाला जाता है, जिससे खेतों में होने वाले अधिकांश नुकसान जो बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इससे खाद नहीं बन पाती है, वह अनेक प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। और हमारी भारत सरकार को चाहिए कि वे अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में भी पॉलिथीन पर रोक लगाने की कोशिश।
0: जी हाँ, आप सही कह रही हैं।

0: हमारे देश में भी पोलोथीन पर रोक लगाने की कोशिश।
1: जी हाँ, आप सही कह रही हैं कि पर्यावरण में सबसे ज्यादा पॉलीथीन से प्रदूषित होती है वो है मृदा प्रदूषण। और क्योंकि सभी जानते हैं कि पॉलीथीन का उपयोग किया और फेंक दिया, ये पॉलीथीन आपने देखा होगा कि कभी भी गलती नहीं है। आप इस कूड़े के ढेर में आप इस पॉलीथीन को बहुत सालों तक भी दबाकर रखोगे तब भी वह पॉलीथीन वैसे के वैसे निकलती है। तो साधारण सी बात है कि यह हमारी मृदा को अर्थात मिट्टी को जो होती है उसको और अधिक अनुपजाऊ कर देती है। तो आप एक बात ये बताएं कि ये किस प्रकार अनुपजाऊ करती है।
0: देखिए, आपने देखा है कि पॉलीथीन गलती नहीं है कभी भी
1: जी,
0: और ना ही ये सड़ पाती है। जब ये सड़ती भी नहीं है और गलती भी नहीं है तो आप इससे जाहिर है कि इससे अनेक नुकसान होते ही हैं, मिट्टी को भी, इंसान को भी, पशु पक्षियों को भी, और रोड पर भी आप देखते ही हैं। प्रतिदिन इससे काफी रोग भी पैदा हो जाते हैं इंसान के अंदर, आपने ये देखा होगा।
1: अच्छा, और मला जी एक चीज और बताएं, क्या पॉलीथीन के रंग का भी कोई असर पड़ता है? हाँ। कि पॉलीथीन का रंग यानी रंगीन पॉलीथीन हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाती है या जो रंगीन नहीं होती हैं अर्थात सफेद होती हैं वह नुकसानदायक नहीं होती हैं?
0: देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अन्य पॉलीथीनों की अपेक्षा रंगों का भी इसमें बड़ा महत्व दिया गया है। नीले, पीले और काले आदि के रंगों की होती हैं, जिसके अनेक बार रिसाइकिल की जाती है, जिससे हमारी सामग्री को भी नुकसान पहुंचता है और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है।
1: अच्छा, जैसा कि आपने बता रहे हो, रंगीन पॉलीथीन में सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती है वो होती है काले रंग की पॉलीथीन। तो काले रंग की जो पॉलीथीन होती है वह कैंसर जैसे घातक रोगों को बुलावा देना है। अर्थात हमें चाहिए कि हम पॉलीथीन का उपयोग तो बिल्कुल ही ना करें। जहां तक हो हम कागज या कागज के चीजों का उपयोग कर सकते हैं। और बहनों, पॉलीथीन के लिए जहां तक है कि हम इसका किस प्रकार इसको नष्ट कर सकते हैं और किस प्रकार इसको उपयोग न करके हम अपने लिए बचाव कर सकते हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, इसको जब आपने बता ही दिया कि ब्लैक पॉलीथीन जो है बहुत ज्यादा हानिकारक होती है
1: जी।
0: क्योंकि ब्लैक वाली जो पॉलीथीन होती है वो रिसाइकल होकर बार बार प्रयोग में की जाती है। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने इसके लिए पॉलीथीन का वजन जो रखा हुआ है उसमें 0.05 मिलीमीटर निश्चित किया है। अतः इससे अधिक वजन की पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक वजन वाली पॉलीथीन हानिकारक होती है।
1: हाँ, जैसे कि आप बता रहे हो कि अधिक वजन वाली पॉलीथीन जो ज्यादा हानिकारक होती है, तो वैसे भी पॉलीथीन न तो गलती है और न ही नष्ट होती है, तो इससे हम छुटकारा किस प्रकार पा सकते हैं?
0: इससे छुटकारा पाने के लिए आप देखिए, बाजार में कागज के जो लिफाफे होते हैं उनको प्रयोग में लाइए
1: जी।
0: अधिकतर कागज का प्रयोग कीजिएगा, अपने घर से कपड़े का बैग ले जाइए
1: जी,
0: उसको इस्तेमाल में कीजिएगा। मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में आप पॉलीथीन में किसी भी चीज को मत लीजिए
1: जी,
0: अपने घर से सब लेके जाइए, जैसे डिब्बा है
1: जी,
0: कपड़े का बैग है, इसलिए आप इसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए।
1: हाँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि पॉलीथीन के जो हम बढ़ावा देते हैं हम खुद ही देते हैं, क्योंकि हम घर से बाजार गए और कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं। तो साधारण सी बात है कि जब दुकानदार से हम पॉलीथीन ही मांगेंगे कि कोई भी चीज खरीदनी है भैया पॉलीथीन देना, तो वो तो तुरंत पॉलीथीन देंगे क्योंकि वह तो ऐड कर देते हैं सामान के साथ उसका मूल्य भी। तो इसीलिए पॉलीथीन को नष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ही आगे आना होगा।
0: देखिए, किसी भी चीज को जब आप स्वयं आगे नहीं बढ़ेंगी तो सामने वाले कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर चीज को पहले आप अपने ऊपर लागू करके देखिए, फिर अन्य सारी किसी थर्ड पर्सन के ऊपर। जब आप ही बैग और कागज का इस्तेमाल करेंगी तो अन्य व्यक्ति भी इसी तरीके से अपने आप में ही सतर्क होता चला जाता है।
1: क्योंकि उर्मिला जी, ज्यादातर बहनों को ये पता ही नहीं है कि पॉलीथीन से कितनी हानियां हैं और अज्ञानता की वजह से उस पॉलीथीन का अधिकाधिक उपयोग करती हैं।
0: देखिए, इसमें पता तो सबको सब कुछ है, बस होता क्या है कि अधिकतर लेडीज जो घर में होती हैं वे ये चाहती हैं कि हम बिना कुछ किए ही बाजार जाएं, कोई बैग नहीं ले जाना पड़े, वही बाजार से बैग में ही पॉलीथीन में ही सामान लेके चली जाए, वो घर से बैग ले जाना पसंद ही नहीं करती है
1: जी। और इसी वजह से इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, हम उपयोग करेंगे कागज का, तो निश्चय ही हम पॉलीथीन से होने वाले इतने सारे दुष्परिणामों को रोक पाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉलीथीन हमारे लिए कितनी हानिकारक है। जहां इसका उपयोग है वहीं यह हमारे लिए हानिकारक भी है।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता पॉलीथिन का प्रयोग और उसके

उष्मणा विज्ञान वार्ता के अंतर्गत जानकारी दे रही थी उर्मिला शर्मा और उनसे बातचीत कर रही थी अंतिम गौतम। जी हाँ बहनों, पॉलिथीन हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो इसीलिए आज से ही सभी बहनें संकल्प लें कि पॉलिथीन का प्रयोग ना के बराबर ही करें। पर्यावरण की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रकृति बचाओ और जीवन बचाओ, साथ ही साथ पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ।

वर्तमान युग डिजिटल का युग कहा जा रहा है, यह तो हम सभी जानते हैं। तो डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा पर बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहनों, किसी भी तकनीक का प्रयोग करने से पहले हम सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी इस तकनीक के क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानि। खासकर हम सभी महिलाओं के लिए तो यह जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पूरी जानकारी के बिना हम किसी तकनीक का प्रयोग करते हैं तो धोखा भी हो सकता है। इसलिए आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा हर किसी के लिए जरूरी है। महिलाएं साइबर दुनिया में कई तरह के खतरों का सामना कर रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन उत्पीड़न, पहचान की चोरी या फिशिंग अटैक, साइबर स्टॉकिंग आदि समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो बहनों, यह सब हमें जानकारी के अभाव के कारण इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इनसे बचने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। तो बहनों, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको मजबूत पासवर्ड, सोशल मीडिया पर सीमित व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, संदिग्ध लिंक या अनजान लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। डिजिटल सुरक्षा में के लिए सोशल मीडिया खातों को निजी, यानी जो आपके प्राइवेट हैं, जो खाते हैं, उन्हें आप निजी रखें और अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। और साथ ही साथ अपनी तस्वीरें, फ़ोन नंबर या ठिकानों की जानकारी सार्वजनिक मंचों पर साझा करने से बचें। सभी ऑनलाइन खातों के लिए अलग और कठिन पासवर्ड का उपयोग करें तथा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA चालू रखें। और बहनों, आप इस तरह की ये सावधानियां रखेंगी तो आप काफ़ी हद तक साइबर फ्रॉड से बच सकती हैं। और अगर आपके साथ साइबर अपराध हो जाए तो तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। और आपत्तिजनक सामग्री है या फर्जी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट जो भी है, उसे लेकर आप सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें और संबंधित प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट करें। तो इस तरह से बहनों, आप साइबर सुरक्षा को अपनाएं और साइबर फ्रॉड से बचें। और अब बात कर लेते हैं अपने बहनों के खास घरेलू टिप्स की। बहनों, आप देख ही रही हैं कि मानसून आ गया है और बारिश भी बढ़िया हो रही है। अब ऐसे में हमारी बहनों की चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चिंता जायज भी है, क्योंकि सीलन घर में आती है, बीमारियां भी आती हैं, मच्छर भी आते हैं और खान पान में भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी बहुत सारी चिंताएं बहनों की हो जाती हैं। तो बहनों, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आपको करना क्या है, घर की देखभाल और सीलन से बचाव करने के लिए कपूर और नीम, यानी अलमारी और कमरों में नमी व बदबू दूर करने के लिए कपूर या सूखी नीम की पत्तियों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और घर की साफ सफाई अच्छे से रखें, फर्श की सफाई अच्छे से करें, सेंधा नमक डालकर करें। और फर्नीचर की सुरक्षा के लिए लकड़ी के फर्नीचर को दीवारों से थोड़ा दूर रखें और नमी से इसको बचाए रखें। सेहत के लिए आपको क्या करना है, उबला पानी पीना है, छान कर पीना है, जिससे पेट के संक्रमण का बचाव होगा। और हर्बल चाय यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पिए, अदरक तुलसी दालचीनी डालकर, जिससे आप स्वस्थ रहेंगी, मस्त रहेंगी। बहनों, अब हमारी घड़ी लगातार इशारा कर रही है, समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। फिर मिलते हैं आपसे इसी समय पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा रेशमा अग्रवाल को। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोग एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: प्रसून जोशी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। फना फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम सुनिधि चौहान के युगल सुरों में। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

इरशाद कामिल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया विशाल शेखर ने। सुल्तान फिल्म से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये

0: रहे हैं कि आज पांचवा दिन है, हम इस पर एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
1: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
1: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई।

0: पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित तीन लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक फैली पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: India-EU Free Trade Agreement is an important milestone in India-EU strategic partnership. Trade and economic cooperation are central to the contemporary partnership. With a combined market of nearly 2 billion people and an economic zone of around $25 trillion, the India-EU FTA is among the most significant economic partnerships in the world.
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बार्ब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले तीन दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश

0: चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस।

0: और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT व CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की। आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने

0: समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
1: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेतीबाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
0: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
1: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
0: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
1: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कैलपोद उत्सव कहाँ और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
0: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
3: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।

0: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
1: अच्छा,
0: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
1: वाह,
0: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
1: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
0: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
3: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
0: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
3: हैं? वो कैसे?
0: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
3: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
0: वो कैसे?
3: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
3: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
4: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो, पहुंचे तो सही।
3: वो तो है, लेकिन मित्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
4: मैं क्योटो देखूंगा
3: और मैं ओसाका।
4: क्यों नहीं, चलो
3: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
0: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
3: चलो,
0: संभल कर, संभल कर।
3: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
4: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
0: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
3: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
4: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
3: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ, चलो।
2: फिर क्या था, दोनों में

0: तक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
1: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग। आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या?

0: आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
1: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
0: मेरी माँ? बाजी, हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
1: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
0: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत की नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। इस बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें, हाँ ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है,
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब...

0: ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
1: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब?
1: हाँ, आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाए।
1: हाँ, ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, दिखाइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
0: नहीं,
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। हाँ? हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
3: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण यही संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5 बजकर

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हमारी सांध्यकालीन सभा का सफर अब शुरू होता है। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस

0: वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
1: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
2: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है, बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
1: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, यहाँ पे देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा।
2: जी।
1: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं।
2: जी, मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास, और 2003 में बोला गया कि आपकी बेटी और मेरी कजन की अगर खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम सिरसा में एक नर्सरी खुल रही है गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ पे हॉकी, बैडमिंटन और जूडो है। तो मैं और मेरी बहन काफी एक्साइटेड थे क्योंकि गाँव से शहर जाना ही हमारे लिए 2003 में एक बहुत बड़ी बात होती थी कि ओके हमें वहां जाना है। तो मेरे मम्मी जी को गठिया था उस टाइम पे और मैं सब घर के काम करती थी, जो भी घर का झाड़ू पोछा, गाय भैंस का जो काम होता है, मैं, पापा और भाई मिलके करते थे। तो मेरे लिए ऐसे था कि मन में एक डर था कि मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी। बट फिर मैं दादाजी के पास गई और उनकी जो खुशी थी, दादाजी ने बोला कि बेटा मैं चाहता हूं तू हॉकी खेल। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, सिर्फ क्रिकेट सुना था क्योंकि घर में टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। तो मैंने बोला कि दादाजी हॉकी क्या होता है कैसे? तो बोलते बेटा एक बॉल होती है, 11 दो टीम में प्लेयर होते हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे होते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट गेम है। उनकी जो वर्डिंग थी ये थी कि डिफिकल्ट गेम है, तो मैं चाहता हूँ मेरी पोती हॉकी खेले। और हम एक, दादाजी का ऐसा था कि हमारे घर में पोतों से ज्यादा पोतियों को या बेटे से ज्यादा बेटियों को प्यार मिलता था। तो मैंने कहा दादाजी ने मेरे से कुछ बोला है तो मुझे खेलनी तो हॉकी है।
1: अच्छा
2: जी। फिर मैंने हॉकी की ट्रायल दी और वहां मेरे फिजिकल टेस्ट हुए थे क्योंकि हॉकी खेलनी तो आती नहीं थी, तो नॉर्मल टेस्ट। तो वहां पे मैं सेकंड आई थी, गई, मन नहीं लगा क्योंकि वो लाइफ बहुत एक
1: गवर्नमेंट होती है ना।
2: जी, डिसिप्लिन एंड मम्मी की हेल्थ का ऑलरेडी बताया, वो माइंड में था। तो काफी रोती थी, हफ्ते में सिर्फ एक बार फोन आना होता था फ्राइडे को घर से।
1: क्या उम्र थी आपकी उस समय?
2: 13 साल की थी।
1: अच्छा जी, तो 13 साल की सविता के लिए वो सब बहुत ज्यादा हो गया।
2: अभी भी याद करती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पापा मम्मी ने मुझे छोड़ने नहीं दिया, इस वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सब कोशिश की कि किसी भी तरह से मैं हॉकी छोड़ दूँ और घर वापस चली जाऊँ। काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मी को बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, खाना भी छोड़ दिया था खाना। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे पापा को कि ये ठीक से खा नहीं रही है, सो नहीं रही है, पूरा टाइम रोती है, आप लेके जाओ। तो पापा लेने आए और तब मेरे कोच थे सुंदर सिंह खरब, उन्होंने बोला कि इसकी हाइट अच्छी है और हम इसे गोलकीपर बना देते हैं, तो मे बी वन डे सी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्ड पापा के लिए, एक इंडिया खेल सकती है आपकी बेटी, मेरे लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया था उन्होंने। मैं जो भी होगा अपनी बेटी के लिए फिर तो करूंगा, बट ये बात मुझे उस दिन नहीं पता थी। मैं खुशी खुशी घर गई हूँ कि मैं हॉकी छोड़, छोड़ के आ चुकी हूँ, मम्मी के पास जाके बता रही हूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा मंडे को तू वापस जा रही है। मैंने बोला नहीं मैंने छोड़ दिया है सबको, मैं अपनी फ्रेंड्स को बाय बोल के आई हूँ। तो बोले कि नहीं बेटा अब तू एज ए डिफेंडर नहीं खेलेगी, गोलकीपर खेलेगी। उससे पहले मैं एज ए डिफेंडर ट्रेनिंग करती थी। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं बोल। तो मम्मी ने बताया कि बेटा तेरे पापा ने 18,000 रुपए गोलकीपर किट के कोच को दे के आए हैं, क्योंकि कोच ने बोला ऑलरेडी मेरे ग्राउंड पे दो गोलकीपर

0: पर हैं, तो मेरे पास साल में दो ही किट आती है। या तो आपको एक
1: लेकिन
0: साल,
1: आपके पापा के पास तो पैसे नहीं थे ना किट
0: जी
1: के।
0: मेरे पापा जॉब करते थे बट 8,500-9,000 रुपये सैलरी थी, और वो चीज़ मेरे को ऐसे हुआ कि 18,000 रुपये ऑलमोस्ट 2 महीने की सैलरी मेरे को मेरे किट पे पापा ने लगा दी, और मेरा मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है मैं कुछ कर पाऊंगी। काफ़ी रोई मैं, पर मम्मी ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, कोशिश कर, क्या पता भगवान, तू मेहनत कर, क्या पता भगवान वो दिन ला दे और पापा के लिए एक रिटर्न गिफ्ट होगा। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस किया, सिरसा में ही थी, और फिर मेरी सिलेक्शन आगे स्टेट में गई मैं वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि नॉर्मली हम शाहबाद की टीम से काफी गोल खाते थे, बट वो मेरा पहला टूर्नामेंट था जहां पे हमने बहुत कम मार्जिन से मैच को लूज
1: और
0: किया
1: आपने काफी गोल बचाए।
0: जी। तो वहां जो हमारे जो शाहबाद टीम के कोच थे, उन्होंने मुझे आके 100 रुपए दिए कि आज तेरी वजह से टीम का परफॉर्मेंस अच्छा ऐसा रहा है। तो वो चीजें मुझे फिर मोटिवेट किया कि ठीक है
1: लेकिन
0: मुझे
1: आपने जो शुरुआत की, जब उसके बाद आप साई एकेडमी गए, उसके बाद
0: जी
1: नेशनल टीम में आप 2008 में आ चुकी थी, 17 साल की उम्र में आप नेशनल टीम में आ गई थी, मतलब है ना। और उस
0: जी
1: पर आपने एशिया कप खेला। ये जो आपने हॉकी के मैदान में गोल के आगे आप खड़ी हो जाती हैं कि ये बॉल को मैं पास नहीं होने दूंगी, उस वक्त सविता का क्या जज्बा होता है मन में?
0: मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई, और हम गांव में रहते हैं, तो पापा के पास फोन गया कि आपकी बेटी का नाम नेशनल कैंप में आ गया है। तो पापा बोले कि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन मैंने लड्डू बांटे थे और एक आज लड्डू बांटूंगा। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कोच के पास मैसेज आया कि मेरा और एक मेरे साथ की प्लेयर थी कि दोनों का नाम इंडिया कैंप में आया, आजाद सर उस टाइम मेरे कोच थे। तो सर ने सेम जो मैंने आपको बोला वो बात बोल के भेजा कि एक बार तो कोई भी इंडिया खेल लेता है, बट उस जगह को मेंटेन करने के लिए आपको बाकियों से और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गई कैंप में और मैं जूनियर थी उस टाइम पे, और अगले ही कैंप में मुझे बोला गया कि आप जूनियर से सीनियर में शिफ्ट हो रहे हो। तो भंगू सर हमारे कोच थे नेशनल टीम के उस टाइम, तो हर चीज पापा को बताती थी, तो बड़ी खुशी से कि पापा का सपना मे भी पूरा होने वाला है, एक अच्छी फीलिंग आ रही थी। जो चीज ने मुझे मोटिवेट किया हॉकी खेलने के लिए वो ये था कि मैं घर गई और दादाजी मेरे पास आए और बोले कि बेटा एक पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है जहाँ नाम आया है कि रंजीत सिंह पुनिया की पोती सिरसा की पहली इंटरनेशनल प्लेयर है, और काफी खुशी थी उनकी आंखों में और बहुत इवन इमोशनल थे, और बट वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आज मैं ये पेपर अपनी कबड़ में रखता हूँ, आज का दिन तू देख और आज से पूरा 1 साल बाद मैं तुझे खुद से पढ़ के दिखाऊंगा, मैं पढ़ना
1: अच्छा,
0: स्टार्ट करूंगा।
1: क्या बात।
0: और आज वो हमारे साथ नहीं है बट वो चीज सच हुई, 1 साल बाद उन्होंने वो खुद से पेपर मुझे पढ़ के सुनाया। उस दिन मैंने सोच लिया कि अगर मैं 67 ईयर की एज में दादाजी को इंस्पायर कर सकती हूँ पढ़ने के लिए, तो फिर अब तो मैं हॉकी नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्या पता और कितनी लड़कियों को मैं इंस्पायर कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सविता ने जो काम शुरू किया, इंस्पिरेशन बहुत बहुत ज्यादा लड़कियों को मिल पाई, क्योंकि ये एक वॉल की तरह जो खड़ी होती है गोल के आगे सविता, वो वाकई एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन खासकर उन इंस्टांसेस की बात बताएं जब आपने जापान के गोल रोके, जब आपने ऑस्ट्रेलिया के इतने 9-9 गोल रोक डाले, उस समय किस तरीके का उत्साह था टीम के अंदर, उस समय किस तरीके का ऑडियंस का रिएक्शन था, और आप उस समय क्या महसूस कर रहे थे?
0: सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एज ए डिफेंडर से गोलकीपर आना, मैंने उस चीज को बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे हेलमेट के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मुझे मैं कैमरे से या पब्लिक प्लेस से काफी दूर रहती थी, बट ग्राउंड में मेरे को लगता था कि मैंने हेलमेट पहन रखा है, अब मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ। तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। और जापान के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, वो रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन था, और हमारी टीम में एक ही बात होती थी उस टाइम पे कि हमारी टीम ने कभी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं
1: नहीं
0: किया है।
1: किया
0: 1980 में बुलाया था बट वो एक इन्विटेशन था ना, टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। तो वो मुझे था कि मैं गोलकीपर हूँ और गोलकीपर के ऊपर बहुत गेम डिपेंड होता है, तो शायद मुझे कुछ उस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम को और कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो काफी अच्छा मैच था वो, मुझे आज भी याद है। और उस 1.5 ईयर हुआ था उस टाइम मुझे बीइंग ए फर्स्ट गोलकीपर, प्रेशर सिचुएशन था, बट जब जब एक सेव करते हैं और पता है कि एक स्टेप क्लोज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट मोमेंट के लिए नर्वसनेस भी होती है कि अभी और गलती ना हो जाए, अभी और गलती ना हो जाए। तो जैसे ही पता चला कि हमने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, और उसके बाद में रियो ओलंपिक्स में मेरी और मेरी टीम दोनों की ही परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, घर पे आई अगेन पापा के साथ सब कुछ डिस्कस किया कि मैं उतनी खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है। तो पापा ने बोला बेटा पहला ओलंपिक्स था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस आएगा तो बाद में और अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने सोचा कि मुझे हॉकी ने बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए और भी बहुत कुछ करना है। तो मैं डायरी लिखती हूँ नॉर्मली, तो मैंने फिर उस सारी चीजें उसमें लिखा कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और अपने आप को और डे बाय डे बेटर बनाना है ताकि मैं टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में अपना और योगदान दे सकूं। बस मैम, बहुत गोलकीपर की नॉर्मली लोगों को

0: शायद लगता है कि गोलकीपर्स का सिर्फ मैच खेलना तो आसान है क्योंकि बाकी प्लेयर्स भागते हैं, गोलकीपर सिर्फ 60 मिनट खड़े रहते हैं। गोलकीपर्स के बहुत सेशंस एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी टीम से ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं। हमें ड्रैग फ्लिक रोकना है, शूट आउट रोकना है और बाकी जो भी फुटवर्क की बहुत एक्सरसाइज करनी होती है, तो वो मैंने अपनी रूटीन में ज्यादा एक्स्ट्रा एड की और कोचिज से हेल्प लेती थी उस चीज में कि मुझे बताओ कि बेटर परफॉर्म करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स आता है और जब हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया का क्वार्टर फाइनल था, सभी को यही, हमें जो मैसेज मिल रहे थे सभी यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने पूल में टॉप किया है और
1: बिल्कुल
0: इंडिया अपने पूल में लास्ट आया। और एक अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये था कि ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूल मैचेस में एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। जैसे मैच से पहले वाले दिन पापा से बात होती है तो पापा बोल रहे कि बेटा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, काफी टफ ओपोनेंट है, बट कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से, वो एक मैच खेलने के बाद रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को बोला, पापा आप टेंशन मत लो, हम जीतेंगे। मेरे पापा भी अगर आप बात करोगे वो जरूर ये चीज को मेंशन करें। अपने आप से ऐसे कॉन्फिडेंस था क्योंकि हमारे एज ए टीम हमने बहुत काम किया था। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था और काफी टीम अच्छा खेल रही थी, मेरा भी अच्छा चल रहा था और लास्ट क्वार्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि 1-0 वो डाउन थे, बट उनको वो एक बॉडी लैंग्वेज जो देखते हैं ना, क्योंकि हाफ टाइम हुआ वो हंसते हुए आ रहे हैं, क्वार्टर टाइम हुआ हंसते हुए वापिस आ रहे हैं, अदरवाइज ओलंपिक्स का मैच है, हार रहे हैं, तो कोई भी उस टाइम पे उनको एक था कि
1: तो
0: शायद
1: ये
0: हम,
1: साइकोलॉजिकल गेम्स भी खेली जाती
0: या
1: हैं।
0: दैट आल्सो डेफिनेटली, बट थोड़ा ये उनको था कि हम निकाल लेंगे, गोल निकल जाएगा, हमें भी हमारी टीम पे कॉन्फिडेंस था। तो हमने यही बात किया कि आज के मैच में डू और डाई, और एक एक मिनट एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वार्टर में, उससे पहले 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे, लास्ट क्वार्टर में 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले। और मेरे साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने रोका, मेरे साथ मेरे दूसरे डिफेंडर भी थे, तो एज ए टीम हमने वो मैच जीता।
1: हाँ, आपके जैसे खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से हॉकी लोगों के बीच में पॉपुलर हो पाई है, और मतलब आप इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं अभी जिनको 3 बार लगातार FIH की ओर से बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो वाकई सराहनीय है। सविता, आप तो कैप्टन भी रही हैं ना, आपने इतने सारे गोलकीपर के तौर पर जो हासिल किया, कैप्टन जब बनी थी तो कुछ प्रेशर महसूस होता था क्या आप?
0: डेफिनेटली क्योंकि वो गोलकीपर अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, बट उसके साथ बींग ए कैप्टन और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एड होती है, तो प्रेशर होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, पूरी टीम के लिए है। तो ऑफकोर्स कैप्टन इज ए
1: बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रेशर वाली
0: रिस्पॉन्सिबल
1: जॉब तो
0: प्रेशर
1: है।
0: जॉब है।
1: अच्छा, हमने हमेशा आपको जैसे इस तरह के ट्रैक सूट्स में ही देखा है, खेलते हुए भी, अभी भी आप हमारे साथ इसी तरह से हैं। इन ट्रैक सूट के पीछे की सविता क्या ऐसी भी है जो बिंदी लगाती है, चूड़िया पहनती है, आम लड़कियों की तरह सजती है, पसंद करती है?
0: नो मैम, मैं बहुत ही सिंपल रहना पसंद करती हूँ। और बचपन में मुझे मम्मी बताते हैं कि मैं छोटी थी तब था मुझे, बट 5th 6th क्लास तक था कि कुछ गांव में जाते थे, बैंगल्स लेते थे और पायल लेते थे, बट मैंने सिर्फ लेके रखी है, पहना कभी भी नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि मुझे अगर कोई बोलता है कि मेकअप करना है तो इट्स मेक मी स्ट्रेस कि मुझे उतना पसंद नहीं, मुझे सिंपल रहना ज्यादा पसंद है।
1: ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन हेलमेट के पीछे जब छुपी होती हैं, उनके बाहर निकलकर जो सविता सामने आती है, उस सविता के बारे में ऐसी क्या बातें हैं जो एक हॉकी प्लेयर से हटकर लोगों को जाननी होती हैं?
0: हॉकी से बाहर ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ कि हॉकी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनाया है, बिना हेलमेट के भी आज मुझे वो कॉन्फिडेंस फील होता है। मैं उस दिन का शुक्र गुजार करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने अपनी हॉकी जर्नी को कंटिन्यू रखा।
1: वैसे आप जब छोटी थी उस वक्त आप के प्रैक्टिसेस के लिए जाना करना, और हरियाणा जैसे राज्य जहाँ पर हम देखते थे कि लड़कियों को लेकर उस वक्त तो आंकड़े और भी लैंगिक अनुपात के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, करना होता था, तब क्या क्या मुश्किलें आती थी आप?
0: 2011 की बात है, उस टाइम हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती थी, ट्रांसपोर्ट की बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं दिल्ली में ही थी, बेंगलोर से मैं दिल्ली आई थी और बस स्टैंड पे थी मैं, क्योंकि उस टाइम टैक्सी फ्लाइट ये सब उतना नहीं होता था, ट्रेन से आते थे और यहाँ से आगे रोडवेज से जाते थे। मिडिल क्लास फैमिली से थी तो मैं बहुत बार ऐसा होता था कि पापा को मैं बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि अदरवाइज वो लेने आएंगे, फिर पैसा लगेगा, खर्चा होगा। मैं दिल्ली बस स्टैंड पे थी, मेरे पास गोलकीपर बैग था और मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे खड़ी थी, कोई मुझे बस में चढ़ा नहीं रहा था क्योंकि इतना बड़ा बैग है, देखे सबकी बैग रखेगी उतनी जगह पे 2 सवारी और बैठ जाएंगे, मेरा गला भराया था। मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे बस में बिठाओ। तो उन्होंने बोला इतना बड़ा बैग और पास में जो लोग खड़े मजाक कर रहे थे, लग रहा है देश छोड़ के जा रही है। तो वो चीजें मुझे अंदर से वीक कर रही थी, इट्स नॉट कि मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे वीक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों खेल रही हूँ। और उसके बाद में ज्यादा खराब तब हुआ जब मैंने कंडक्टर से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको बस में नहीं बिठाएंगे, या तो आपको 2 पैसेंजर की टिकट खरीदनी पड़ेगी जी। और 250, मुझे याद है 250 रुपीज की एक टिकट होती थी, और मैंने कहा नहीं, 500 रुपीज तो एक्स्ट्रा वो पैसे

0: तो मैं बचा सकती हूँ। मैंने कहा नहीं। तो फिर बोलते आप ऊपर रख दो बस के ऊपर, छत पे रख दो। मैंने बोला इतना बड़ा बैग लेके मैं अकेले कैसे जाऊंगी, आप बोल दो, आप किसी की हेल्प के लिए मुझे बोलो। तो मैं उस बस में नहीं चढ़ी और मैंने पापा को रोते हुए फोन किया कि पापा मुझे नहीं खेलना है, मुझे हॉकी छोड़नी है, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं खेल पाऊंगी, कि मुझे बहुत खराब लगा आज ऐसे ऐसे हुआ। तो पापा ने बोला कि बेटा आज आज का दिन कैसे भी निकाल ले, चाहे मुझे सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी पड़े, पर मैं तुझे इस वजह से तो हॉकी नहीं छोड़ने दूंगा। पेरेंट्स की सपोर्ट क्या होती है वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि सब एक्सपेंसिव उठाना। और मैं इंडिया टीम में 2008 में आई थी और 18 तक मेरे पास जॉब नहीं थी। तो बट कभी भी पापा ने कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी बेटी के पास जॉब नहीं है। मम्मा थोड़ी टेंशन लेती थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा ये था कि क्या पता कब इंजरी हो जाए। तो ये टाइम थे जहाँ पे लगता था कि मैं अपने माँ बाप को जो खुशी देना चाहती हूँ वो अभी भी अधूरी है, बट
1: और उनकी खुशी के लिए आप लगी रही हैं।
0: जी लगी।
1: ये जो आपने लोगों की बात की कि लोग ऐसे कमेंट करते थे, सब करते थे, जब आपने खेलना शुरू किया तब भी तो आपको कमेंट सुनने को खूब मिलते होंगे।
0: बिल्कुल, बट मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ कि मेरे को ये चीजें बाद में, जब मैंने ऑलमोस्ट इंडिया टीम में आने के भी 3-4 साल हो चुके थे, तब मुझे मम्मी ने बताना स्टार्ट किया।
1: तो क्या बोलते थे मम्मा, क्या बताते थे?
0: यही कि मतलब हाइट लंबी है तो क्यों शॉर्ट्स पहनना, क्यों जींस पहनना, और घर से बाहर भेजना वो भी तो सेफ नहीं है, कल को अपनी मर्जी से शादी करवाएगी, ये सब चीजें थी जहाँ। और बट मेरे पापा ने बोला कि हमारा डिसीजन है, हमारी बच्ची है, हम देखेंगे क्या करना है। तो वो मुझे बहुत बाद में खुशी होती थी कि कितने अच्छी चीजें कि वो चीजें मुझे पता नहीं चलने दी।
1: आपके मामा पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा,
0: बहुत
1: जिसकी वजह से आप यहाँ पर आज पहुंची हैं। आई एम श्योर बहुत ही ऐसे हरियाणा के भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, जो आज आपको देखकर बहुत प्रेरणा ले रही है। चलिए यहाँ पर एक रैपिड फायर करेंगे सविता के साथ। पेनल्टी शूट आउट या पब्लिक स्पीकिंग, किससे ज्यादा नर्वस होती है आप?
0: पब्लिक स्पीकिंग।
1: अच्छा, एक स्ट्राइकर दुनिया का जिसको आपको लगता है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहती है आप उसके खिलाफ?
0: ड्रैग फ्लिकर है नीदरलैंड से, ये भी जेंसन।
1: ओके, अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं होती तो क्या होती?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना चाहती
0: थी? पापा का सपना था, क्योंकि मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं, तो उन्होंने किसी वजह से, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। पापा ने बोला मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊंगा।
1: एक टीममेट जो आपको कितना ही टेंस मोमेंट हो हंसा सकता है?
0: नेहा गोयल, शी इज वेरी फनी।
1: अच्छा, क्या मुश्किल है, पेनल्टी कॉर्नर बचाना या फिर अपने फेवरेट फूड को ना कहना?
0: पेनल्टी कॉर्नर बचाना।
1: अच्छा
0: जी,
1: खाने को ना करना आसान है
0: मेरे लिए, मैं आई एम नॉट रियली फूडी पर्सन।
1: ओके, अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन दुनिया के से एक स्किल सीखनी हो तो क्या होगी?
0: मैं मैरी कॉम की फिटनेस को बहुत इंस्पायर करती हूँ।
1: ये सेंटेंस पूरा करिए कि लोग मुझे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
1: अगर आपको मैच खेलते हुए अपनी एक पोजीशन किसी के साथ स्वैप करनी हो गोलकीपर के हटकर, तो क्या होगी?
0: मैं हमेशा ग्रेस, जो हमारी प्लेयर थी, उनके साथ हमेशा मजाक करती थी कि मुझे एज ए डिफेंडर खेलना पसंद है, क्योंकि जैसे गोलकीपर का एक परमिशन मिलता है कोचिंग करना, वैसे एक डिफेंडर है जो पूरी गेम को खिला सकता है। सो इट्स सेंटर डिफेंडर आई ऑलवेज एंजॉय।
1: ऑलराइट सविता, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। लेकिन अंत में देश की बेटियों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, मैं हर एक उस बेटी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल सेट करें लाइफ में और बहुत फोकस और डेडिकेशन के साथ बहुत हार्डवर्क करें और अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाएं। उससे ज्यादा बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और उम्मीद करते हैं कि अब जब भी आप मैदान पर उतरेंगी जो आप गोल बचाती आई हैं वैसा ही आप करिश्मा दिखाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: सविता पुनिया, जाहिर है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं और जो प्रेरणा देश की बेटियों को दे रही है वही आगे भी लगातार जारी रहे, हमारी ओर से यही शुभकामनाएं हैं। आज बस इतना ही, नमस्कार।
2: हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। ये कार्यक्रम डीडी न्यूज के सहयोग से प्रस्तुत किया गया।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। डीजी प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वार्ता। विषय है समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार हैं वीना शर्मा।
1: कार्यक्षेत्र यही समाज है, जिसमें रहकर वह अपने कर्मानुसार अगले जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। 84 लाख योनियों में से किसी एक में पढ़ने का मूल वह यही स्थापित करता है और भारतीय

में पढ़ने का मूल वह यही स्थापित करता है और भारतीय धर्म साधना में वर्णित अमृतत्व के सिद्धांत को अपने श्रेष्ठ कर्मों से प्रमाणित करता है। लाखों करोड़ों लोगों में से मरणोपरांत केवल वही व्यक्ति समाज में अपना नाम स्थायी बना पाता है जो जीवन में ही अपने को दूसरों के लिए अर्पित कर चुका है। वास्तव में दूसरों की सेवा की भावना से ही समाज स्थापित है और इस तत्व से समाज के नैतिक आदर्शों की प्रतिष्ठा होती है। दूसरों के लिए किए गए कार्यों से जहां अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां समाज में प्रधानता भी प्राप्त होती है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा लोकप्रियता प्रदान करती है। इससे मानव का अपना कल्याण भी होता है, क्योंकि लोक की प्रवृत्ति है यदि आप दूसरों के काम आएंगे, समय पड़ने पर दूसरे भी आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति दूसरों के लिए आत्मबलिदान करता है, समाज उसे अमर बना देता है और यह यश उपार्जित करता है। कीर्ति अस्य सजीविति, गुरु गोविंद के अमृत का यही आधार है। ईसा ने कहा है, जो तुम में सबसे बड़ा होगा वह तुम्हारा सेवक होगा। प्रकृति का भी ऐसा ही व्यवहार है, वह कभी भी अपने साधन अपने लिए प्रयुक्त नहीं करती है। वृक्ष कवहू नहीं फल भके, नदी न सवेक नीर, परमानंद के कारणे साधु धरा शरीर। मानव जीवन में समाज सेवा, सहानुभूति और दयालुता प्राय रोग, दरिद्रता, महामारी, उपद्रवों आदि में संभव हो सकती है। इनमें राजा सिवी, ददीची और गांधी जैसे बलिदान की आवश्यकता नहीं है। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों, मृदुलता का व्यवहार, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, दूसरों की दुर्बलताओं के प्रति उदार होना आदि में सहानुभूति के चिन्ह विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि में मानव मात्र की कल्याण भावना निहित है। यहाँ जो कोई भी कार्य होते हैं, वे सदा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की दृष्टि से होते हैं। यही संस्कृति भारतवर्ष की आदर्श संस्कृति है। आज के युवाओं की मानसिकता में कई दृष्टिकोणों से अंतर आया है, लेकिन उनमें समाज सेवा की भावना का रूप यथावत बना हुआ है। समाज सेवा का गुण हर युवा में होना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का हित चाहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, प्रभु उनसे सदा प्रसन्न रहते हैं। इससे उनका अपना चरित्र महान बनता है। लोग उसी को चाहते हैं जिसके हृदय के कपाट उनके लिए सदा खुले रहते हैं। मानवता का उद्देश्य और मानव जीवन की सार्थकता केवल इसी से है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण में भी रुचि दिखाए। युवाओं का कर्तव्य बनता है कि वे अपनी सोच में अंतर लाएं और वे स्वयं उठें और दूसरों को भी उठाएं। दीन की करुणामयी पुकार से, बड़ी बड़ी आंखों में झलकते हुए आंसुओं से, असक्त और असहाय की याचना पूर्ण करना दृष्टि से, जिसका हृदय दबीभूत ना हुआ, तपती और भूखों को अपने भूखे पेट पर हाथ फिराते हुए देखकर, जिसने अपने सामने रखा हुआ भोजन नहीं दे दिया, अपने पड़ोसी के घर में लगती हुई आग को देखकर, जो उसकी रक्षा के लिए एकदम कूदना पड़ा, वह मनुष्य नहीं पशु है। त्याग और बलिदान ही हमारी संस्कृति के मूल भाव हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज यह समस्या बड़ी जटिल हो गई है कि युवा वर्ग किस विचारधारा को अपनाएं तथा समाज सेवा के कार्यों में किस प्रकार योगदान करें। बहुत से लोग अपने अपने ढंग से आज समाज सेवा की भावना को सामने रख रहे हैं। सरकार चलाने वाले नेता अपनी योजना लाद रहे हैं तथा निरीह समाज को अपनी चिंतन धारा पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि कहने वाले अधिक हैं तथा सुनने वाले कम। कई बार युवा वर्ग भावावेश में आकर अनेक ऐसे कार्य कर बैठता है और अपना तथा समाज का अहित कर बैठता है। अतः आज युवाओं को अपनी मानसिकता का परिवर्तन करना होगा और युवाओं को चाहिए कि वे अपने मन में अच्छा और बुरा समझने की क्षमता उत्पन्न करें।

0: और अपनी विवेक बुद्धि से ऐसे सेवा के कार्य करें जो समाज व देश के कल्याणकारी हों। युवाओं को गांव में जाकर वहां की समस्याओं को समझना होगा और उनके निदान का प्रयत्न करना होगा। उन्हें स्वयं कार्य करना चाहिए तथा दूसरों के लिए आदर्श उपस्थित करना हो चाहिए। इससे ग्रामीण जनता में उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा विभिन्न प्रकार की प्रगतियों से भी परिचित होते जाएंगे। उन्हें अपने पास पड़ोस में सहयोग तथा सद्भाव का वातावरण प्रदान करना चाहिए, जिससे विरोध मिटे तथा सहकारी भावना का विकास हो। मानव में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक स्वार्थ साधना की तथा परमार्थ की। युवाओं की मानसिकता स्वार्थ परक के साथ साथ जब परमार्थ की हो जाती है तब वह समाज सेवा की भावना कहलाती है। अपने लिए तो पशु भी जीते हैं, मनुष्य केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी जीते हैं। कहा भी जाता है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्राचीन ग्रंथों में भी समाज की भावना के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण के लिए बत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने कल्याण के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए। ईसा मसीह ने समाज सेवा हेतु सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। सुकरात ने समाज सेवा के कारण जहर पिया। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज व देश की सेवा के लिए लगा दिया। अब्राहम लिंकन ने आजीवन समाज की सेवा की। मदर टेरेसा ने अपना जीवन समाज हित में लगा दिया। वर्तमान में युवाओं के मन में भी समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वे आज समाज सेवा के विविध क्षेत्रों के कार्य कर रहे हैं, यथा धर्मशालाओं का निर्माण, औषधालय की स्थापना, जलाशय व पाठशाला बनवा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज का युवा वर्ग बड़े जोश के साथ काम कर रहा है। दीन दुखियों की सेवा करना, विकलांगों की सहायता करना, गरीबों को विद्या प्रदान करना आदि क्षेत्रों में युवा वर्ग बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है तथा समाज सेवा कर अपने जीवन को सफल बना रहा है। समाज सेवा की भावना का महत्व भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावते। समाज सेवा करने वाला संसार में पूज्य माना जाता है। यद्यपि आज चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है तथापि समाज सेवा करने वाले युवाओं की कमी नहीं है। आज के युवा को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यदि वे जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अपने मन को दृढ़ बनाना है। इसलिए कवि ने कहा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वह अपना सब कुछ अर्पित कर भी समाज की सेवा के कार्यों में संलग्न रहे तथा समाज व देश की रक्षा, सेवा व विकास में सहयोग दे। हम समाज में कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, ईमानदारी एवं देश हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करें। आज जब हमारा देश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे समय में प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि वे अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज तथा देश के सम्मान तथा विकास के लिए तन मन धन से अपने को अर्पित करे तथा पूर्ण रूपेण समाज व देश की सेवा में जुट जाए।
1: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे ये वार्ता। विषय था समाज सेवा की भावना और युवा मानसिकता। वार्ताकार थी वीना शर्मा।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

जी दोस्तों, समय का जो करता सम्मान वही पाता जीवन में मान। हर काम होता सहज और सही, ना होती हड़बड़ी ना गड़बड़ी कहीं। पल पल का जो रखता ध्यान, सफलता बनती उसकी पहचान। इसलिए समय का करो सदुपयोग, यही है जीवन का सबसे बड़ा योग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है, वह अपने सभी कार्य समय पर और सही ढंग से पूरा कर लेता है। इसके विपरीत, जो समय को व्यर्थ नष्ट करता है, उसे अंतिम समय में हड़बड़ी और गड़बड़ी का सामना ही करना पड़ता है। जल्दबाजी में किए गए कार्यों में अक्सर गलतियां हो जाती हैं और परिणाम भी अच्छे नहीं होते। इसलिए हमें अपने समय की योजना बनाकर ही कार्य करना चाहिए। समय का सम्मान करने से जीवन में अनुशासन, सफलता और आत्मविश्वास आता है। जबकि समय की उपेक्षा केवल हड़बड़ी और गड़बड़ी, साथ ही साथ असफलता को भी जन्म देती है। अतः हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता।

तो दोस्तों, जीवन में याद रखिए, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हड़बड़ी गड़बड़ी से बचा रहता है, क्योंकि वह हर काम समय पर और व्यवस्थित ढंग से करता है। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को भारत सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों, स्वरोजगार करने वाले लोगों, दुकानदारों, कारीगरों, महिलाओं तथा नए उद्यमियों को बिना गारंटी के आसान ऋण पर उपलब्ध कराना है। इस ऋण से वे लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें, यह इस योजना का उद्देश्य है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के और व्यवसाय को विकसित करने में सहायता की है। इसलिए यह योजना भारत में उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। और अब कार्यक्रम में आपको आगे लिए चलते हैं गीत और संगीत की ओर। सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, ये गीत अभी आपने सुना के और शिफाली की आवाज़ों में, फिल्म रेस टू से। गीत लिखा प्रशांत ने, संगीत प्रीतम का।
1: भैया जल्दी चलो, भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुस्तफा जाहिद की आवाज में फिल्म रागिनी MMS 2 से। और इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों

0: पर सहमति दे दी है।
1: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

संध्या 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संध्या वंदन। ब्रज साहित्य कार्यक्रम का समय रहेगा 7:05। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं हास्य वार्ता भगवान बचाए ऐसे जीवन ते। प्रस्तुत करेंगे मनमोहन गुप्ता।

संसद समीक्षा हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम सुहानी श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर।

देशभक्ति परक रचनाएं आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से हम प्रसारित करेंगे रात्रि 8:30 पर।

रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे जी आर बेहरे बुआ।

संध्या 6:15 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे पशुपालन की आवश्यकता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड और प्राकृतिक खेती समय की मांग। इसी कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता, विषय रहेगा धान में फसल सुरक्षा। सुधीर अग्रवाल से भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा।

हिंदी समाचार होंगे रात्रि 11 बजे, 11:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार, रात्रि 11:10 पर होगा हमारी द्वितीय सभा का समापन। अभी हम आपको बता रहे थे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। देश गान कुछ ही पलों में।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण खुशी पलों में।

प्रेस ग्रामीण कार्यक्रम सुनवे बारे साहब किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, वो बरसात को सीजन है और बरसात शुरू हो चुकी है, और बरसात में हमारे जो किसान भैया हैं उनके पशु के कई तरह की समस्या हो, तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं पशुपालन की आवश्यकता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड पर। किसान भैया, जैसे कि खेती के काजे सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करी है ताकि किसान खेती की जो लागत है, जो ज़रूरत है, वाके काजे धन के काजे बोहरे इनके पास ना जाए और मोटी ब्याज पे पैसा नहीं ले, बैंक से सस्ती दर पे पैसा मिल जाए 7% और वैसे भी कम ब्याज पे, और वैसे अपनी खेती बाड़ी को समय से लगा सके, समय से काट सके, और फिर समय से बेच के मंडी में बेच के फिर समय से बैंक को भुगतान कर सके। ऐसे ही गाय और भैंस और अन्य पशुओं के पालन के करवे वाले जो हमारे भैया हैं उनके काजे किसान क्रेडिट कार्ड बेहद ही आवश्यक है, और यह योजना को संचालन देखो पशुपालन विभाग के माध्यम से होए। पशुपालन विभाग के अपने हर ब्लॉक पर एक चिकित्सालय हो, वहाँ चिकित्सा अधिकारी

0: बैठें, आप उनसे एक ही विस्तृत जानकारी ले सको। एक फॉर्म आपको भरना है, चिकित्सा अधिकारी व कोई संस्तुति करेंगे। आपके पास जितने पशु हैं उन पशु के कानन पर टैग नंबर पड़ेंगे, बीमा भी होगा। और भैंस की हम बात करें तो भैंस को 60-70 हज़ार रुपया तक और गाय को 40-50 हज़ार रुपया तक ऋण की व्यवस्था है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था सरकार ने करी है। और किसान भैया, बहुत से किसान भैया यह योजना को लाभ भी ले रहे हैं। चूंकि पशुपालन से रोजाना की आमदनी होए, जो हमारे पशु जा समय पे केवल 2 महीना ब्यावे के समय के आसपास ठल रहे, बस समय पे आमदनी ना हो, बाकी तो रोजाना ऐसे आमदनी होती रहे। और यह योजना का उद्देश्य यही है कि दूध को जो अपनो एक अंश है बैंक से, जो किसान क्रेडिट कार्ड लियो हुआ चुकावे के काजे, अपने पैसा की व्यवस्था करके किसान भैया समय समय पर बैंक को देते रहें। तो किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही कम ब्याज पे आपको ऋण की व्यवस्था है जाए। तो यह योजना को हर किसान भैया को लाभ लेना चाहिए और आच्छादन करना चाहिए। और अगर खेती बाड़ी पर आपने देखो कर रखो है, तो आप अपनी घरवाली के नाम से, क्योंकि गाय भैंस और पशुपालन को जो काम है वो हमारे घर में माता बहन ही करें। तो अगर आपकी आवश्यकता है अच्छी डेयरी, अच्छे पशुपालन के माध्यम से अपनी आय बढ़ावे की आपकी इच्छा है, तो यह योजना पे ज़रूर ध्यान दें। और अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है, चाहे वो छोटो हो या बड़ो हो, वहाँ जाके संपर्क कर सकें, आवेदन कर सकें। लेकिन लोन की जो बात है वो बैंक ही करेगी। और आपके पास जो पशु हैं उनको सत्यापन इन पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा या LEO के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो रही चर्चा पशुपालन की आवश्यकता हेतु किसान क्रेडिट कार्ड विषय पे। आपको बात करें प्राकृतिक खेती समय की मांग, तो किसान भैया देखो, जैसे हमारे रासायनिक खेती की तरफ हमारे किसान भैया बढ़े हैं, उत्पादन अंधाधुंध बढ़ावे की दिशा में हमारे किसान भैया बढ़े हैं, वैसे ही प्राकृतिक खेती की तरफ हमें थोड़ा सा रुझान बनाना पड़ेगा। क्योंकि लगातार रासायनिक असंतुलन से हमारे जो खाद्यान्न हैं उनकी पोषण क्षमता है, स्वाद है, सुगंध है, या में सब पे असर पड़ो है। और या के चलते हमारी जो सेहत है, चाहे वो मनुष्यन की बात करें, पशु की बात करें, पक्षीन की बात करें, तो बहुत से तो पक्षी विलुप्त है गए। जैसे गौरैया की हम बात करें, पहले हमारे घर जो है जिनमें आरे दीवारे दुछत्ती ये सब हो करें, तो गौरैया हमारे घर में सुबह ही 5 बजे हमें जगाए वो शुरू कर दी। लेकिन अब चूंकि जगह ही ना है तो गौरैया करीब करीब विलुप्त जैसी ही है गई हैं। तो हमें प्राकृतिक खेती को समय की मांग के अनुरूप अपनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास यह दिशा में करना चाहिए। और अब ज़्यादा नहीं करें तो कम से कम अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप हम प्राकृतिक खेती के प्रयोगन की तरफ बढ़ें। और वासी जो प्राप्त उत्पाद हैं उनको अपने दैनिक जीवनचर्या में शामिल करके हम अपनी सेहत को ठीक ठाक करें, पोषण युक्त आहार प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। तो प्राकृतिक खेती के काजे किशन भैया देखो, हर जगह पे, जैसे मथुरा में हम बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र वेटनरी विश्वविद्यालय में है, यहाँ समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहें। तो कोई भी नई जो तकनीक है, एक नया जो तौर तरीका है, वाकू अपनावे से पहले आपको ये सोचना होगा कि हम अपनी जो नई तकनीकी है वाकू कितने क्षेत्र में करें। जैसे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, माली हालत है, या परिवार के संचालन की जो व्यवस्था है वो प्रभावित ना हो। तो किशन भैया, ये हमारी चर्चा प्राकृतिक खेती पर ही। और आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र पे अपने हर ब्लॉक पे कृषि रक्षा इकाई है, वहाँ हर जगह पे SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी विषय वस्तु विशेषज्ञ और प्रभारी अधिकारी दोनों रहें। आप उनसे भी संपर्क कर सको कि प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग कहाँ पे हो। आजकल ऑनलाइन की हम बात करें तो YouTube चैनल पर भी आप डालोगे तो सुभाष पालेकर जी जैसे बहुत से लोग हैं जो प्राकृतिक खेती की YouTube पे तमाम सारी जो वीडियो हैं वो भरी भई हैं। सीजन धान को है और धान की हमारे किसान भैया को धान में बड़ी समस्या, खरपतवार नियंत्रण से लेके और कीट और बीमारी इनके दिक्कत पैदा हों, तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता धान में फसल सुरक्षा विषय पे। जानकारी दे रहे हैं सुधीर अग्रवाल और इनसे भेंट करी है विजय सिंह नौलखा ने।
1: कार्यक्रम सुनवे वारे सब किसान भैयान को राम राम। किसान भैया देखो, आज के समय में जो किसान जो धान की रोपाई कर चुके हैं, केव भैया ऐसे हैं जिन्होंने रोपाई अब शुरू कर दी है और निकट भविष्य में थोड़ी रोपाई को कार्य होत रहेगा। तो आज हमने जई विषय पे आज अपने किसान भाई को जानकारी देवे का जे स्टूडियो में आमंत्रित करे हुए सुधीर।

0: अग्रवाल जी है, तो भैया रोपाई के पश्चात जो किसान भैया हैं वो धान में कृषि रक्षा के यानी धान में फसल सुरक्षा के कौन कौन से उपाय ऐसे हो जाएं जा क्षेत्र में, और उनका जे कौन सी बात को ध्यान रखें जा विषय पे आज जानकारी लेंगे। तो अग्रवाल जी राम राम।
1: राम राम साहब, राम राम जी।
0: जैसे मैंने कही कि रोपाई है गई है, केवन की तो रोपाई 10-15 दिन पहले कर दई, समय ते कर दई और कछु करीब रहे, तो तुम्हारे जो अनुभव है जाके हिसाब ते जा वक्त जो धान की फसल है वह में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं, कौन से कीड़े लगे या कौन सी बीमारी लगे जिन पे किसान भैया ध्यान देवे की जरूरत है।
1: जो हमारी 15 दिन की 20 दिन की पौध लगी हुई है उसमें गिराड़ आ रही है नीचे
0: जी,
1: और उसकी वजह से पौधे सूख रहे हैं और इस तरह तिरभट्ट हो रहे हैं। दूसरा बकानी का रोग जो है बासमती में, जो किसान भैयाओं ने जिन्होंने सीड का ट्रीटमेंट किया था उनके खेतों में तो समस्या कम है, जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया है उनके खेतों में विकराल समस्या है। वो उसको कहा जाता है बुद्धू पेड़, वो जो है ऊंट की तरह लंबे लंबे पेड़ हो जा रहे हैं और जिससे किसान की फसल प्रभावित होगी। उसके लिए सबसे आवश्यक है कि किसान जो है कार्बन डीजम जो रसायन आता है उसका 1 किलो एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, और जो रोपाई करने जा रहे हैं तो अपना जब कीचड़ बनाते हैं खेत में आखिरी जुताई पर मिट्टी में मिला के कार्बन डीजम को खेत में डाल दें, जिससे कि क्या कहते हैं कि हमारे जो है बकानी रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरा जो गिराड़ आ रही है उसके लिए 50% वाला क्लोरोपरीफॉस, 5% प्लस 5% साइपरमेथिलीन आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से उसको डाल दें किसान, तो वो जो जड़ की समस्या आ रही है, जड़ में जो सूंडी आ रही है लाल रंग की गिराड़ आ रही है जो उसको खा रही है और जो जड़ें काली पड़ रही हैं, तो उससे निजात मिल जाएगी। क्योंकि अभी 15 दिन हुए हैं, अगर हम अभी कार्टब डालते हैं दूसरा रसायन डालते हैं तो फिर स्टेम बोरर के लिए समय कम बचेगा, तो हम इस समय तो 15 दिन के लिए डाल दें उसमें क्लोरोपरीफॉस, और जब हमारी 30-35 दिन की फसल हो जाए तब उसमें हम कार्टब डाल दें। कार्टब भी हमको डालनी पड़ेगी 7.5 किलो 8 किलो पर एकड़ की, अगर उसकी मात्रा कम डालेंगे तो उससे जो है स्टेम बोरर नहीं रुक पाएगा
0: जी,
1: क्योंकि स्टेम बोरर में ऐसा होता है कि ये मेड़ों पे इसके लार्वा वगैरह पड़े रहते हैं, और अब के मूंग की फसल में भयंकर रूप से गिरा रही थी
0: जी,
1: और बाजरे में भी गिरा रही है, और ये गिराड़ जो है अब फसल जब मूंग की कट गई बाजरे की कट गई तो जो जीव बचा है वो तो कहीं ना कहीं भोजन करने जाएगा।
0: अच्छा।
1: जब हमारी फसल खड़ी हुई है धान की लग के तैयार हो रही है तो ये उसमें समावेश कर जाएगा, तो उसकी रोकथाम के लिए हमको कीटनाशक खेत में डालना पड़ेगा
0: जी। एक बार मात्रा और बता दें, चूंकि जो किसान भैया हैं वो जो सुनने का है थोड़ा सा उन्हें और आइडिया है।
1: जैसे हम जो है क्लोरोपरीफॉस डालते हैं तो हम उसे आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से डाल दें, क्योंकि 700-800 रुपए लीटर की लगभग मिलती है ये, और 400 रुपए एकड़ का ये करीब करीब खर्चा हम किसानों को भुगतना पड़ेगा, और इसको या तो मिट्टी में मिला के डाल दें खेत में।
0: अच्छा, ऐसे छिड़कवा विधि से?
1: छिड़कवा विधि से, और जब मिट्टी में मिला के डाल देंगे इसको हम तो जब पानी लगेगा तो वो सर्कुलेट पूरे खेत में हो जाएगी
0: जी,
1: क्योंकि अगर उसे हम जो है स्प्रे की ढंग से करेंगे तो वो ज्यादा जहरीला रसायन है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो उसका दूसरा असर भी आदमी के ऊपर पड़ सकता है।
0: अच्छा अच्छा। और देखो सुधीर अग्रवाल जी, हमने पहले ही अपने कार्यक्रम में बकानी रोग की तो चर्चा करी ही करी, तो बकानी रोग ते कैसे मुक्ति है जाए जाकी तो आपने बात बताई, पर कछु ऐसी और बात बताओ कि भाई जी बकानी रोग हो ही ना।
1: बकानी रोग न होने के लिए सबसे पहले हमको पूर्व से व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे हम जो है धान को पहले जो है 2% नमक के घोल में पानी में धो लें उसको, उससे क्या होता है नमक, जैसे हमने जो है 10 किलो में 200 ग्राम नमक डाला तो उससे पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है, जब पानी की डेंसिटी बढ़ गई तो नेचुरली धान ऊपर तैर के आ जाता है जो इन्फेक्टेड धान होता है
0: जी।
1: फिर उस पानी से उस धान को धोकर साफ कर लें और उसको फिर कुदरत के सामने सूर्य देव

0: पिता के शरण में पहुंचा दें धान को और उसको गर्मी में सुखा दें और धूप में जब वो दो दिन सूख जाएगा तो कुदरत उसका ट्रीटमेंट एक नेचुरल वे में ट्रीटमेंट हो जाएगा और उसके बाद जब उसको हम बीज शोधन करके डालें तो कार्बनडिजम उसमें जरूर डालें और दूसरा अपनी नर्सरी में हम जो है ट्राइकोडर्मा जो सरकारी विभाग में आदि छूट पे मिल रहा है उसको लेके एक किलो अपनी नर्सरी में 40 किलो के लिए एक किलो ट्राइकोडर्मा उस खेत में बिखेर दें।
1: अच्छा ये बात तो है गई जो किसान भाई जब बुवाई थे पहले की बात है गई, अब मेरे ख्याल से ये काम करवे को कोई समय निकल गया है, बुवाई ज्यादातर नर्सरी की तैयारी है गई, अब तो रोपाई चल रही है, जा वक्त कौन सी बातन को
0: इस समय सबसे बड़ा जो रोपाई कर रहे हैं हम तो हमको 4% कार्बनडिजम का घोल बना के जो पौध उखाड़ रहे हैं हमारे किसानों के मजदूर जो हैं वो जड़ को धोने के बाद तिरपाल खेत में बिछा दें, पल्लड़ बिछा दें और उसमें 4% कार्बनडिजम का घोल बनाएं और उस पौध को रात भर उसमें पड़ा रहने दें। तो उससे ये होगा क्या कहते हैं कि जब जड़ 24 घंटे उसमें पड़ी रहेगी तो वो जड़ के माध्यम से कार्बनडिजम उस पेड़ में अंदर तक चला जाएगा
1: जी।
0: जब रोपाई करेंगे तो एक तो हमने जड़ का शोधन कर लिया, उसके बाद भूमि के शोधन करने के लिए 1 किलो एकड़ की कार्बनडिजम मिट्टी में लाके खेत में बिखेर दें, और जब हम उसका पौध का रोपण करेंगे तो हमारे संभावनाएं कम रह जाती हैं, 1-8% कभी आ गई तो आ गई, ये जो है बकानी बढ़ना पर बकानी रोग नहीं आता है
1: जी। तो किसान भैया जा वक्त जो है जो किसान भाई अभी रोपाई करना चाहे या जिनकी रह गई है और उन्होंने लेट वैरायटी या बाद में पकी हुई वैरायटी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो जिन सावधानी इनको जरूर पालन करें। अच्छा अग्रवाल जी एक चीज और बता, मैं किसान जो जा वक्त धान की खेती कर रहे हैं उन किसान भैया जिन्होंने रोपाई कर दी है तो उन काजें आगे चल के और कहा बातन को विशेष ध्यान रखना चाहिए,
0: उन्हें सबसे बड़ा ये ध्यान रखना चाहिए रोजाना खेत को देखें, क्योंकि कल मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा था कि कुछ पौधे जो है लाल पड़ रहे थे, तो यानी उसमें ब्लाइट का असर आ रहा है, तो ब्लाइट के असर के लिए हमको जो है उस तरह के फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा जो उसके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि अब जो है नया जमाना आ गया।
1: तो ब्लाइट के लक्षण बता दो थोड़े से,
0: जैसे पत्ते तना लाल पड़ रहा है, पत्ते लाल पड़ रहे हैं उसके, और ऐसा लग रहा है कि हमारा पेड़ जो है खुशहाल नहीं है, उसे कमजोरी सी दिखाई दे रही है
1: जी।
0: तो ये भयंकर रोग बाद में बढ़ के ये भयंकर रोग हो जाता है, इसका अगर हमने जो है अभी उपचार नहीं किया तो उसके लिए अब जो नई दवाई आई है उसमें ट्यूबोकोनाजोल नाम का रसायन है और उसका हम अगर उस पर स्प्रे कर दें तो वो कंट्रोल हो जाएगा,
1: अभी हो जाएगा,
0: अभी हो जाएगा, या कार्बनडिजम का स्प्रे कर दें, और अगर हम बायो में जाते हैं तो सूडोमोनास का स्प्रे कर दें, अगर हमको बढ़िया सूडोमोनास मिल जाती है और सूडोमोनास का स्प्रे कर देंगे तो वो भी इसको कंट्रोल करने में बहुत सहायक होती है।
1: कहाँ ते लें, कहाँ मिल जाओ
0: ये? एक तो हमारा जो क्या कहते हैं ये सब रसायन जो है इफको सेंटर पर आसानी से उपलब्ध हैं।
1: अच्छा।
0: और किसान इफको सेंटर नहीं जाना चाहता, दूर है, तो इफको का ई बाजार है।
1: अच्छा।
0: तो उस ई बाजार पे ऑर्डर दे दें और 3-4 दिन में वो दवा इफको द्वारा आपके घर पे ही पहुंचा दी जाएगी और उसमें 4% की छूट और मिलती है।
1: अच्छा, तो ये तो बढ़िया बात है, अगर कोई किसान इंटरनेट चलाए वो जाने ऑर्डर कर दे घर ही बैठे दवा पाए जाए।
0: और इसमें तो ये है कि अगर मान लो किसान ना जाने तो आगे बालक आते हैं, पड़ोसी आते हैं, तो मोबाइल तो सब पे आजकल स्मार्ट मोबाइल है, वहां पे अपनो खातो खोले और वहां मंगा ली दवाई है।
1: अच्छा, दवाई मंगाई ली, जाको स्प्रे कैसे करें, कहा विधि रहेगी जाको?
0: वो तो सब हम किसान जानते हैं स्प्रे करना, उसका जो है कोई भी दवाई है उसका 2% से 4% हमको 15 लीटर पानी में,
1: एक टंकी में
0: करीब करीब क्या कहते हैं 30 ml से 60 ml दवा डालनी होती है।
1: अच्छा।
0: और उस दवा को डालने के बाद अपने आप स्वयं स्प्रे करें, क्योंकि आज एक

कारण और हो गया है, जो बड़ी भयंकर समस्या हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद तो स्प्रे करते नहीं, ठेके पे स्प्रे कराने के लिए दे देते हैं, वो ठेके पे जो लेबर लेके आती है वो हाई स्पीड इंजन के लेके आती है, न कि फ्लैट फैन नोजल, उनके उसमें हाई स्पीड इंजन होते हैं, फ्लैट फैन नोजल नहीं होता, जिसके कारण दवा उस पेड़ पे न गिर के फुहारे को दूर तक मारती है और उसमें

0: लग मारती है
1: हुँ.
0: और उसमें वो ये कोशिश करते हैं कि हमें ज्यादा मजदूरी पड़ जाए
1: जी.
0: तो दवा कहीं जाती है कहीं नहीं जाती है तो उसके दवा के प्रभाव कम होते हैं
1: हुँ.
0: उसमें सबसे बड़ा कारण ये देख रहा है हम किसानों को कि स्प्रे ऊपर करके न करें पौधे के नीचे करके करें.
1: अच्छा
0: आदमी जो स्प्रे करने वाला मजदूर है
1: हुँ.
0: उसकी गन ऊपर नहीं होनी चाहिए
1: हुँ.
0: गन नीचे को होनी चाहिए
1: जी.
0: जब नीचे गन होगी तो पौधे पे पूरी दवा जाएगी और पूरा असर करेगी वो दवा
1: जी
0: जो है.
1: जी तो एक तो जी बात है गई और जाके अलावा और कोई सावधानी
0: और सावधानी तो ये है कि एक तो उसमें ज्यादा पानी भरा नहीं छोड़े खेतों में क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उससे पानी उबलने लगता है. केवल हम पानी उतना रखें जितनी नमी की आवश्यकता है हमें और
1: कितनों लगभग कितनी गहराई
0: लगभग हम जो है 1 इंच से 2 इंच पानी रखें जमीन में
1: जी.
0: क्योंकि 1-2 इंच पानी होगा तो शाम तक उसे जमीन पी जाएगी अगले दिन फिर पानी लगा दें उसमें.
1: अच्छा
0: तो ये प्रक्रिया नियमित चलती रहेगी या 1-2 दिन छोड़ के पानी लगा दें 4 दिन छोड़ के पानी लगा दें ये कोशिश करें कि उसमें तिरेड़ नहीं फटनी चाहिए.
1: अच्छा
0: अगर तिरेड़ फट गई तो हमारा उत्पादन प्रभावित हो जाएगा. और एक और मैं आपको किसान भाइयों को राय देना चाहूंगा
1: जी
0: कि सबसे बढ़िया कम खर्च का इलाज है कि पटेला घुमाए.
1: अच्छा.
0: एक जो है 15 फुट का पाइप ले लें 4 इंची का उसमें बालू भर के दोनों एंड पे बंद कर दें और कंधे पे लेके उसको खेत में घुमा दें.
1: अच्छा.
0: जिसकी 20 से 25 दिन की फसल हो गई है तो उससे क्या होगा कि एक तो कोई काई की परत टूट जाएगी दूसरा पत्ती लपेटा जो आया है वो मुफ्त में खत्म हो जाएगा तीसरा जो है जब एयरेशन बढ़ेगा तो उसकी जड़ों में फुटाव आ जाएगा और हमारी पैदावार 10-15% बढ़ जाएगी.
1: जी जी तो देखिए किसान भैया आज बड़ी अच्छी बात बताई अग्रवाल जी ने. अग्रवाल जी वैसे ही प्रगतिशील किसान है बहुत दिनाते धान की खेती कर रहे हैं तो जिनके अनुभव के अनुसार जो बात बताई गई है फसल रक्षा के जो उपाय अग्रवाल जी ने बताए हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भैया जरूर ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएंगे. तो अग्रवाल जी आज हमारे स्टूडियो में आए हमारी पंचायत में आए और जो बढ़िया जानकारी आपने दी जाकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद.
0: किसान भैयाओं को राम राम.
2: धान में फसल सुरक्षा सुधीर अग्रवाल से यह विषय पर भेंट कर रहे विजय सिंह नौलखा. तो किसान भैया देखो धान की फसल अब मथुरा जनपद के काफ़ी किसान भैया की मुख्य फसल बन चुकी है और यह फसल में जितनी समस्या हमें मजबूरी ये है कि अगर बाजू में किसान भैया दूसरे किसान भैया धान की फसल लगा रहे हैं तो हमारी भी मजबूरी है कि हमें भी धान लगाना पड़ेगा क्योंकि धान में लगे पानी और पानी की वजह से कम पानी वाली जो फसल है चाहे वो अरहर है बाजरा है ज्वार है ये सब फसल नहीं लग पा में है. तो अब निश्चित रूप से आपको धान में शुरू से लेकर आखिर तक हर चीज़ को ध्यान रखना है. अग्रवाल साहब ने जैसे जानकारी दी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खरपतवार प्रबंधन. तो खरपतवार प्रबंधन के काजे अब बड़े नए नए साल्ट आ गए नई नई दवाई आ गई हैं लेकिन बाकी बाद हु खरपतवार नियंत्रण बहुत बड़ी चुनौती किसान भैया के सामने बनो भयो विशेषकर धान की सीधी बुवाई करवे वाले किसान भैया को ऐसे बहुत समस्या भई है और यह को कारण रहे हो जो बार बार बरसात भई है हल्की फुल्की जो बरसात भई है बारिश के सीजन से पहले बाकी वजह से जो सीधी बुवाई वाली जो फसल है वह में खरपतवार बहुत ज़्यादा पैदा है चुके हैं. तो आपको इन दवाई को प्रयोग करके तुरंत वह में श्रमिक घुमा देने हैं जैसे कि खरपतवार जो जल चुका हो वो निकल जाए और आप बाकी बाद में ही अपनी फसल में खाद पानी लगावें क्योंकि अगर आपने पहले ही खाद लगा दी हो तो फिर वह में खरपतवार प्रबंधन बहुत ही बड़ी दिक्कत को कारण बन जाए वो. अब किसान भैया देखो कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको एक प्यारो सो लोक गीत या के बोल हैं सखीरी हम होते बिरज के मोर. चूँकि ब्रज भूमि है और मुड़िया पूर्णिमा की यहाँ तैयारी है चारों तरफ गोवर्धन धाम बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुको है और मथुरा से लेकर गोवर्धन तक और पूरे जनपद में सब जितने रोड हैं कोसी कला से गोवर्धन सौंख से गोवर्धन उधर डीग की तरफ से गोवर्धन तक के सबरे रस्तन पर बैरिकेटिंग पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक ड्यूटी लग चुकी है और निश्चित रूप से हर दिन गोवर्धन की परिक्रमा और चूँकि बात गोवर्धन की परिक्रमा की है तो देखो गोवर्धन की परिक्रमा को जो महात्म्य है वो भगवान श्री कृष्ण के इंद्र के कोप से ब्रजवासीन को बचावे के कथा से जुड़ो भयो है और मुड़िया पूनों को जो मेलो है वो हमारे जो

कृष्ण भक्त संत हैं उनकी स्मृति में मुंडन करा के बंगाली साधुन के निकलवे की कथा से जुड़ो हुए हो तो यही क्रम में सुनवा रहे हैं आपको एक प्यारा सो लोकगीत जय गाए हुए माधुरी शर्मा ने।

सखी री हम होते बिरज के मोर, माधुरी शर्मा के स्वर में आप सबने लियो या लोकगीत को आनंद। कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवा मैं कृषि समाचार। अलनीनो के प्रभाव के चलते यह साल शुरुआत में थोड़ी बरसात कमजोर भई, लेकिन अब बरसात शुरू हुई है और पंजाब में आबार धान की सीधी बिजाई यानी DSR को रकबा 36% ते बढ़ के 4 लाख एकड़ के आसपास है चुको है। यानी धान की सीधी बुवाई हर राज्य में गति पकड़ रही है, लेकिन यह में जो चुनौती है वो भी हमारे सामने आ रही है। नीति आयोग के विशेषज्ञ ने देश में यूरिया के अत्यधिक उपयोग पर चिंता जताई है। आदर्श अनुपात की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास यानी NPK को अनुपात बिगड़ चुको है और या के अनुरूप नीति बनाने की बात नीति आयोग ने कही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2047 तक के काजे एक नया रोड मैप तैयार किया है, जाके तहत धान गेहूं के पारंपरिक रकबे में घटोतरी करके मक्का, क्योंकि मक्का भविष्य की फसल है, मक्का के क्षेत्रफल को बढ़ावे की दिशा में नीति बनाई है। तो किसान भैया देखो, कार्यक्रम की अवधि समाप्त है रही है। आज के कार्यक्रम में हमने आपको दिलवाई धान की फसल की जानकारी, सुनवाए प्यारे प्यारे लोकगीत और करी सामयिक चर्चा। अगले कार्यक्रम में फिर आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दिलीप यादव। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

श्रोताओं, ये भजन अभी आपने सुना चित्रा सिंह की आवाज़ में। कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

आपने सुना ये भजन हरिओम शरण की आवाज में। कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना चंदन दास की आवाज में।

0: श्रोताओ, इसी भक्ति रचना के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्यिक इस कार्यक्रम में आइए आज हम आपको सुनवाते हैं हास्य वार्ता भगवान बचाए ऐसे जीजनते। वार्ताकार हैं मनमोहन गुप्ता।
1: जीजा शब्द को सुनत खे मई एक अजीब अनुभूति को एहसास हो करे, या में जितेक मिठास है बाकू सुर और व्यंजन में आकार ना दियो जा सके, पर बाकी मिठास की अधिकता सो जो डकार आवे वो

बड़ी दुखदाई है, याकूं कह गई हमारी ताई है। अब देखो न, कलाकंद हो चाहे रबड़ी, सबन को बहुत ही अच्छी लगे, पर जब बामने एक मीठो ज्यादा है जाए तो बाकी खावे को मन ना करे। ठीक भाई तनिया सो जीजा की मिठासो जब घर परिवार समाज में भोत ही है जाए तो बामे अहम और घमंड की झलक उछाल मार जाए कि भैया मैं तो त्यारो जी जाऊं। तो समन ने जी कहिए कि भैया मामे तो समझ लो कि चार आ जाए एक तरिया को, भगवान बचाए ऐसे जी जाते जो 60 वर्ष को हेवे पे सठिया के जे ही रेंकते फिर कि मैं तो त्यारो जी जाऊं। अरे भैया जीजा है तो या को मतबल जेतो ना है कि हम तो दो दो पीढ़ीन के पाछे हूँ मूड़ पे चढ़ा के अरे गैल गैल गरारेन में लिए लिए फिरेंगे। अरे जब घर में हमारी छोरी छापरी को ब्याहे जाए जमाई घर में आ जाए तो हम बिनको कायदा ज़्यादा करेंगे या बासठियाई जीजा को जाके बाल धोरी है गए। अरे जो अपने जी कारे कू आ जाओ नाक पे धरो बैठो है या लिए वो बहुत ही ऐठो है या लिए तो हम कहा सबरो समाज कहे कि भैया भगवान बचाए ऐसे जी जाते। और जीजा के बीच में जब व्यंजन आ जाए तो जीजा जी है जाए जी जा जी कू ब्रज में जीजा कहें के नाई पुकारो जाए है। पर जीजा के 9 नखरा और 13 पसरा जब नाक पे धरे रहे तो कहा सारे सारी सबन के मोड़े पे जे ही निकरे कि भगवान अरे भैया बचाए ऐसे जीजा थे। अब देखो बसंत पांचे पे होरी को जो है डाणो गड़ जाए तो ब्रज लोक जीवन में हूँ जीजा सारी के परसोकलान में हूँ वो मर जाए है। पर जब जीजा हमको और इनको सुन के नहीं खिसिया जाए और बाको गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाए तो सब सारीन के मोड़े तेव जे ही निकले है कि भगवान बचाए ऐसे जीजा थे। और तो और जब जीजा को नाम भीख चंद हुए तो सारीन के बीच तो वो हास प्रयास को प्रमुख रूप है जाए। सभी बातें कहें ओहो भीख मांगे को भीख ओ भीखवारे जीजा ओ भीखवारे जीजा सभी सारी बातें जी कहें चौरे जीजा तो भीख चाहिए का भीख मांगवे तू हमारे दरवाजे पे आ जाइयो हम तो को 2 मुट्ठी चून की डार देंगी। बस तो एक सुनत के में ही अब भैया जीजा आग बबूरा है जाए। अरे मैं कोई भिखारी हूँ है जो तुम वो दरवाजे पे बुलाओगे अरे मैं तो त्यार हो जीजा हूँ जीजा सात सात सारे इनको जीजा हूँ को छोटो मोटो जीजा ना हो समझेंगे नहीं कोई एक आध सारे को हूँ सात सात सारे हैं मेरे ऊंचे ऊंचे हौदान पे उनको जीजा बनो बैठो मैं खबरदार जो तुमने आज ते पीछे मोती ऐसे कही तो जीजा के तम तमारते मुखार बिंद सो निकरे इन बोलन सो सभी बाखर की छोरी छापरी जो कि सारी लगे ही उनके मोड़े ते एक संग जे ही बोल हंसते भय निकर गया भगवान बचाए भैया ऐसे जीजा थे। तो भीख चंद ने सारिन के बोलनते चिढ़के नाई अब लोहरे आकार में अंग्रेजी में बीसी रख लियो तो बातें सबरी सारी बीसी बीसी बीसी कहती तो कछु बातें गुस्सा की सी सी सी सी सी कहती तो कछु कहती जीजान को जीजा को मिर्च बहुत ज्यादा खा ली है या लिए जो सी सी सी कर रहे हो। अरे दे

चमेली गेंदी अरे कू तो अयो या जीजा के मोहरी में गुड़की कांकरी और जो है दादाई दारी अरे आओ तो सही देखो तो सही जीजा कैसे सी सी सी कर रहा है। इतनी सुनो थे मई आ जीजा की है गई खुआरी बस बू जब चिड़के नाई सारी इनके पीछे भागो तो सबई कहवे लगी ओ भैया भगवान बचाए ऐसे जी जाते भगवान बचाए। अब देखो होलास्तक लगत खेमई ब्रज में फागुन के गीतन की बौछार उन पे बौछार है जब हवे लगे और बस बौछार जब है जाए तो जीजा और सारी के पर सोकला उचले मत मारे द्रगन की चोट ये जीजा होरी में मेरे लग जाएगी। इतेक सुन के नाई हमारो जीजा तो हमारे पाछे फटो बांस लेके पड़ जाए और तो जोरन ते खींचतो भय पुकारे कि देखो इन छोरी छापरीन ने कि मती मारी गई है। अरे होरी के गीत में रसिया को छोड़ और मोए बूढ़े को जोर के नाई गाय रही है कि मत मारे द्रगन की चोट रे जीजा। अरे मैं बूढ़ो कहा चोट मारूंगो अरे द्रगन की इन पे बूढ़े जीजा के इन बोलन को सुन के समय एक सुरते बस सारी हंसते भय बगलते निकल जाए कि जीजा भगवान बचाए तोते ऐसे जीजा थे। तो अब देखो को कटरा गुड़ को हुए को कटरा चीनी को हुए हैं तो को हमारे ब्रज में तो जे जीजा को जो कटरा है ना वो है नमक को एक थोक नमक को कटरा दूसरे को नाम है बाको ब्रज भूषण। अब सा ब्रजभूषण की ठोर सो सबरे थोक गिरारे की छोरी और छोरा जब निखरे तो बाकी हवेली पे जरंते पुकारते हुए कहें अरे ओ खरदूषण जीजा रे ओ जीजा खरदूषण ओ खरदूषण जीजा अरे सुने ना कहा अरे ओ जीजा सुनियो तो सही ब्रजभूषण जीजा जब हवेली के सामने थे टोल के टोल जब जे हल्ला सुने तो वो कपड़ा धोवे को डंडा भैया जो हाथ पर है भाई ये लेके नहीं चल तो बने और बिन के पीछे पड़ जाए बाकिया हरकत सो सबरे छोरा छापरे एक सुरते जे कहते सुने जाए ओ भैया ये डंडा लेके आ रहा है जीजा भैया भगवान बचाए ऐसे जीजा ते खरदूषण है खरदूषण। अब देखो चौक बाजार ते आंगे जाके नाई रामोली के जीजा की एक दुकान है बाको जीजा जो है सिमे भाई कपड़ा लत्ता बेचो करे ऐसे सी काटे के जाड़ेन में उलायती दुकान खोलवे की कौन की हिम्मत है। रामोली को जीजा फंटू सूरज चढ़े 10-11 बजे तानू दुकान खोलवे आयो करे आस पड़ोस के छोरा छापरे और दुकानदारों वाकू प्यार सो बस सब जीजा जीजा के यातनिया सोबू जगत जीजा है जाए सकारे भूम रही जो है चौक बाजार के छोरा छापरे और कछु जो है छोरी छापरी घरते जो है खीर पूरी बनाए के और साहब बाकी दुकान के दासे पे तारे के जोरे जब रखा में तो रामोली को जीजा जब दुकान पे आवे तो बाकी तारे खोल के नाई बाकी पहली बाकी नगा खीर पूरी इनके दोना पे पड़ जाए तो भैया बू कैसे तांतो रहे कि पूछो ही मती ना बाकू आ जाए पसीना। अरे देखो तो सही इन मेरे सारे ने जो कुछ ना मिले तो बस याई रख जाएंगे याई है ओ बाकू बापे नाम ना लियो जाए बाकू नाम ना ले बू खीर पूरी ना कह सके मोड़ते क्योंकि बाय बात बड़ी नफरती बस वो तो यही के कि इन्हें रख जाएंगे इन्हें रख जाएंगे वो अपने बोले थे खीर पुआ और जो है कह ही ना सके बस इनके कैब के जब सारी जो है गाड़ी निकले तो सभी एक सुरसों बाकू देख के कह उठे कि भगवान बचाए भैया ऐसे जी जाते अरे जाकू खीर पूरी फूटी।

0: Ach, na, so hei.
1: श्रोताओं, ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे हास्य वार्ता भगवान बचाए ऐसे जीजन थे। प्रस्तुत कर रहे थे मनमोहन गुप्ता। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
6: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
5: इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं।
7: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावक

0: लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
1: इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
2: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराया लाखों परीक्षार्थियों को मांग और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक ना हो।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वो परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भव्य रसायन योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया जाएगा। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी।
3: भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और 5 इयर्स रहेंगे। टोटल फाइनेंशियल आउटले 3000 करोड़ का है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनेंगे, चैलेंज बेस्ड कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन होगा।
1: नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से लगभग 7,740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और

0: रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में कल कांवड़ यात्रा को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान आपसी सौहार्द, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। शामली में प्रदेश के अधिकारियों और हरियाणा प्रशासन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुरक्षा, ट्रैफिक डायवर्जन, सीसीटीवी निगरानी और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर चर्चा की गई। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
1: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए, चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर आम जन हो या जो भी समितियां, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। जनपद स्तर पर भी एक बैठक की गई थी, जिसके मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं, वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है, जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कोई कठिनाई न हो, इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
0: राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में कड़ी सजा देने के लिए सदन में मसौदा विधेयक पेश करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मिली मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना का किया लोकार्पण। कहा, बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और राज्य के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
4: सुखिया, सुना है सरकार पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसे संक्रामक रोगों से बचाने के लिए मुफ्त में टीके लगवा रही है।
5: सही बोले हो भैया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है।
6: हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बीमार होना कितना बड़ा झटका होता। FMD यानी फूट एंड माउथ डिसीज। पूरा भारत इस बीमारी से पशुओं को मुक्त करें।
4: पशुओं के पैरों और मुंह में छाले पड़ना, वजन कम हो जाना और दूध कम होना जैसी समस्याओं से अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए ये टीके अवश्य लगवाएं। और हाँ, हर बार टीके लगवाने के लिए नई सुई का प्रयोग करना न भूलें।
7: किसान और पशुपालक साथी अपने पशुओं को FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज से बचाने हेतु टीकाकरण के लिए नजदीकी सरकारी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें।
3: लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम शाम सुहानी सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं कार्यक्रम शाम सुहानी लेकर, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीत आपके भेजे गए व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। तो करते हैं इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ।

संदेश प्राप्त हुआ श्री राधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, वेबी वियोमिनी, पुरंजय कविता और परिवार के सभी सदस्य। अगले संदेश के साथ जुड़े हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरवेदन सिंह छावला, लोकेश जोशी, आकाश वर्मा, मनीष रेहान, वैदेही हंसिका, लक्ष्मी बस्तर से पूनम नायडू।

0: सोनल सिया, जालना शहर से सोमनाथ गीता ओम सुभाष चंदन और इनके समस्त मित्रगण, मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका गजेंद्र, हेयांश चंदन, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता और प्रतीक हेवराले, मोताला मारा से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जुड़ चुके हैं। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन हक्सा, नाजिया इब्राहिम और परिवार के अन्य सभी सदस्य, दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप, अशोक येले, शेरी वडने रकोला से अरुणा बलदेव, आदित्य दामोदर, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, सलमा रेहान, फैजान मोहम्मद, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद, इन्हीं के साथ श्रीनिका श्रीनिजा, मोहम्मद बुराउद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा आजमीन गुड़िया, संदेश मिला तेलंगाना भोंगिर से, कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी, जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दोरनाला बालाजी, रेणुका बद्री, हरिणी लोकेश, शाहूनगर यवतमाल के आप सभी श्रोता, सरला राहुल विशाल चेतन रोशनी प्रियांशी, निवासा खुपटी से बंडू लोहार चंद्रकला और इनके समस्त परिवारीजन, अजीत भावसार, प्रमिला भावे, सनी भावसार विरमगाम गुजरात से, विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के आप सभी श्रोता, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से जुड़े गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश प्रमिला बंछोर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्रापिया, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसमा और मोहम्मद कैफ अंसारी, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी पिपुल कामड़े, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश उषा, अमित हैपी रॉय, गाजीपुर से प्रतीक रोशनी प्रांजल रॉय, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद हराम और इनके परिवार के सभी सदस्य, पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श अलौकिक और इनके समस्त मित्रगण, सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।
1: अरे ओ सुखिया, सुना है
0: इसी गीत को सुनना चाहा, नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन, इशरत वसीम, रुबीना आरिस, नदीम शमी, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा ने, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल निशा, वरवट वकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या जय हागे,

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म का नाम जमाना दीवाना, गीत लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता रविराज गौरव और इनके मित्रगण, दालदली बाजार से संजय कुमार, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु कुमार गुप्ता, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर। संदेश प्राप्त हुआ है हमें चूड़ी लाइन मुंगेली से। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश उर्मिला, दीपक स्वाति जायसवाल, जमशेदपुर से विपिन स्वाति, देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल, छनुलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता रज्जन, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। संदेश मिला है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला चीनू, दीपक अनुश्री श्याम कुमार, चंडीगढ़ से जुड़े सतीश विमला अनेजा,

गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदिले और आरती जोदिले। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण कोमल, किरण कपिल, कुणाल मेहरा। चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी, दीक्षांत। सतना एमपी से उमंग आकांक्षा, माही मलिक। मजनू का टिल्ला से कमल, मधु, सागर बालूजा। रंगारेड्डी तेलंगाना से कानूगुला गोपाल, माहेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन, विघ्नेश। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर एन कृष्णा, पीहू। भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीना कारी, पुंजराज आरती, आकर्षण, जय श्री। पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा जुड़ चुके हैं। कोयते बस्ती पुनावले से अजय, करिश्मा, अविका, साइशा। श्रीरामपुर से जुड़े डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू, अर्चना। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु, संस्कृति पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवर। सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता, तुषार, रिंकी और इनके समस्त परिवारीजन। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़े हैं। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री और वैष्णवी। इन्हीं के साथ चंचल। नसवाला चौक मलकापुर से संजय, उषा, प्रतिमेश, निवृत्ति, संजय चौहान, मोहम्मद खाजा, रिजाउद्दीन और फसीउद्दीन, आयशा, तबस्सुम, जुबैरिया जुड़े हैं वरंगल से। नागपुर के आप सभी श्रोता विट्ठल अनुसुईया, पवन राज यादव, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश और स्वराज विराज। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज, पीआर जैन। अमरावती महरा से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना, प्रणय, प्रतिभा और हीरामणि। प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र वरिंदर, कुलदीप एकम, दमन अभिजोत। संदेश मिला बठिंडा पंजाब से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। तिरुपति से प्रकाश। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं समाना शहर पंजाब से। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता आरजू हसमुख, बुलबुल, संजीव और इनके परिवार के सभी सदस्य। बुलढाणा बारा से राजू माठे, गजानन, संजय, ज्ञानेश्वर। जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप और गुरशबद। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, सोनू, एंजल, पपी भाटिया। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

आवाजें श्रेया घोषाल और श्रीराम की, फिल्म का नाम खिलाड़ी 786, गीत रचना समीर अंजान की, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्याम सुहानी आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन ने। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस। अगले संदेश के साथ आप जुड़े हैं इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी और डॉक्टर बेबी अंसारी। तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्कीन, शाहदरा दिल्ली से, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, केशु, रिदान खुराना। गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फरहीन फरहान और इनके समस्त परिवारीजन। राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी कामेश, भारती यादव, खंडवा मध्य प्रदेश के श्रोता। कबीरनगर लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और दानिश गुनौरी। खंडवा से कमला देवी, विमला देवी। शीतला माता चौक खंडवा से ही विशाल सिंह, विवेक सिंह। रामगंज खंडवा से विजय, कविता महोबिया, इन्हीं के साथ अनय, अनाया महोबिया। नांदेड़ महारा से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, अंतरा प्रभा और इनके समस्त परिवारजन।

नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या सविता भाकरे, रामचरण विश्वकर्मा, साहिल प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के श्रोता, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल काजल, मानवी तनवी, लक्ष्य मोहिनी बलवीर दूलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। नरगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद और मेहरुनिसा। अगले संदेश के साथ आप सभी बुढ़ाना महाराज से संतोष काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले, भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़े पारसमणि, हीरामणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, मेघा मस्कीन दिल्ली से आप सभी जुड़े हैं। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय, ममता और किट्टू, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और परिवार के सभी सदस्य,

औरंगाबाद से प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, स्वीटी, अंशुमन और बेबी ओवी। गुन्नौर से आदिक कमर, तकदीर, मुजफ्फर अली और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हैं। सुधाकर, राजेश यादव, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी, कल्पना। संदेश मिला जाफराबाद से। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली। वड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ चुके हैं। जमशेदपुर से मुराहू देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर सुमन जायसवाल। गंडई पंडरिया से प्रवा पवन कुमार सेन, प्रवा देवी, लकी विकी, नानू रविंद्र, रौनक सेन जुड़ चुके हैं। अगले संदेश के साथ क्रियांश बगाड़िया, योगेश ओम, गरिमा रजत और मनीष चौधरी, फाजलिका पंजाब के आप सभी श्रोता। सुदर्शन पल्लवी, प्रकर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर मध्य प्रदेश से। बुलढाणा मारा से वासुदेव बोधवड़े, अनीता, रमेश राव गाठोड़े, राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, राजेश, शीतल राजेश। संभाजी नगर से जुड़े हैं ये श्रोता। कलानौर से नरेंद्र, किरण, नितिन और मयंक शर्मा जुड़ चुके हैं। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदर, योगेश, दीपक और पूजा खटक ने। जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान जुड़े हैं बुलंदशहर से, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश चौहरी।

श्रोताओं, इसी गीत और इन्हीं फरमाइशों के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र

मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की

जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

0: उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में देशगान।

अभी तक आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जानशीन के कुछ गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत रचना प्रवीण भारद्वाज की, संगीत आनंदराज आनंद का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म जानशीन के कुछ गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, इस गीत को स्वर दिया था गौरी बापट ने, शब्द लिखे देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म जानशीन के कुछ गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, जसविंदर नरूला और साथियों की आवाज में ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म जानशीन के कुछ गीत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
4: लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ

0: प्रधानमंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
3: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे

0: सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज है शुक्रवार का दिन, हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नवरंग लेकर।

कार्यक्रम में पहला संदेश प्राप्त हुआ है बिहारी कॉलोनी महासमुद्र से मोहम्मद याकूब आशमा, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, कल्लू मल्लू कालिया बेलदार। मलकापुर महाराज से नारायण इंगले सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। नरविल महाराज से पीएस नहावकर, विशाल निर्मला नहावकर। मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनिया करमकर। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल, अजीत आयुष, नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित शकुन, आरुषि ओशिका और अंजलि जंगेल। मामुलवाड़ी महाराज से जुड़े हैं सोपान ताइडे, विजया ताइडे। जिगांव विदर्भ से वसंतरा भोज ने पीएस नहावकर। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री वैष्णवी और चंचल। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, तनुजा ईशांत। अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी अंकुर इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। नागपुर महाराज से आप सभी श्रोता कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और इफ़ज़ाल। रामगढ़ कैंट से निपी साहनी, सुनीता साहनी। सूरत राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत और बीबी जानविका।

लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला लाडली रिमझिम और सक्षम चौबे। हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं बुंदेलखंड हमीरपुर उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल मंजूरंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेगिलानी, बबीता सुभाष, बब्बू डब्बू। हीरावली फाजालिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार के सभी सदस्य जुड़ चुके हैं। पोखर डुमराव से डब्लू वली वेलदार, आसमा, सोनम और इनके समस्त परिवारीजन। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य और मेगा मस्कीन। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन, फातिमा, डब्लू, सोनम और समस्त परिवारीजन। धनौरी तेलीवाड़ा से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया, अयान बाबू। कर्जत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना, सदफ, आमना, इकबाल, इमरान और इनके समस्त मित्रगण। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं कुंडलवाड़ी महाराज से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी। सरगुजा मेनपाट से रूबीना थापा, सोनम, सोनिया, रेशमा थापा। जुटमिल रायगढ़ से डब्लू बेलदार, आदिबा बेलदार, सरफुद्दीन बेलदार और आसमा। यवतमाल विदर्भ महाराज से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जुड़ चुके हैं। मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, लकी तानिया नारंग। मोताला महाराष्ट्र के आप सभी श्रोता राज गवई, राजवीर गवई। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओ, ये गीत अभी आपने सुना राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में फिल्म झूम बराबर झूम से। इस गीत को लिखा गुलजार ने, संगीत निर्देशन शंकर एहसान लोय का। कार्यक्रम नवरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम कपिल शिवांश, संगीता लिपि दीपाली गोप।

शाहदुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। अगली फरमाइश के साथ जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, फरांसी जिला हिसार से। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी। गइंडवाड़ा से आप सभी समशुल कमर राही, शाहीन अदनान फैजान, अनु उस्मान, कलीम अंसारी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा प्रथमेश, निवृत्ति संजय चौहान। जलगांव से काशीनाथ ढेंगे और नंदा ढेंगे। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं। तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश, सागर कटक। नासिक से विशाल, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। राहीनगर गंजुडवारा से समशुल खान, अदनान फैजान, अनु ताबिश, आदाब और अरहान। बागपत उत्तर प्रदेश से आप सभी संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, इन्हीं के साथ अपा ढींगिया। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास, मानिकपुरी, राजा दास और रानी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राशियर ममीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ साइना, निवान शर्मा।

0: बस्ती गंडडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा तौसीफ तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब जुड़ा है बाजार रोड मुंगीसापुर से। आप सभी श्रोता मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार, सावित्री देवी, मोहित देविका। अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं मुन्नी चौक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, चंडीगढ़ से सतीश विमला अनेजा, ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं आपकी पसंद के आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शिवानी वर्मा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ जुड़ चुके हैं पाहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंचोर चंद किशोर, प्रीति और छाया बंचोर, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल दीपिका गव्या, सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी जयपाल यादव। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल निशा। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली मोनिका रानू। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं गंडुडवारा से एम फारूक शेख, क्षमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज मुस्कान। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज कालका से। शेवगांव से राम ऊषा, कोपरगांव से सुरेश मालोदे, वर्षा मालोदे। अनिल कुमार घोड़के, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री यज्ञेश घोड़के, संभाजीनगर महाराष्ट्र के श्रोता हैं आप सभी। जलालाबाद वैश्य से सुरेश कंगनीजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान और इरफान। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। विक्रम कसवासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युदव हनुमानगढ़ राजस्थान के आप सभी श्रोता हैं। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, दीपक, अनुश्री। अगला संदेश हमें मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वीवी, वामिका और इन्हीं के साथ वाणी नवा शहर पंजाब से आप सभी। अगले संदेश के साथ जुड़ा है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। मेहरनगर उमेरखेड़ महाराज से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत, प्रिंस एकांश और टुकटुक गवानकर। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। दतिरंगी भाटापारा से पारस मणि, हीरामणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखीलाल वर्मा। रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता डिंपल, प्रियांशी और भव्य देवांगन। संदेश मिला बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम जैसे को तैसा, आवाजें लता मंगेश।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ आप सभी श्रोता जुड़े हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत और कुमार किरण, साथ ही साथ इनके सभी परिवारीगण। बीड शहर मारा से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जैशी मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीबी कुलथे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी महिमा, नीतू, वैदिक वेद। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल विशाल, शीला, गायत्री धनजे। अगले संदेश के साथ कुम्भार गली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश संतोष और पांडुरंग कुम्हार। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बस

कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री, पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, रिया जिया तुसी, आयुषी अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंतलाल साहब, इन्हीं के साथ हीरा मोती। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़े हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद नदीम पटेल। अगले गीत की फरमाइश हमसे की है कृष्णा की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील, हिना, बुशरा, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि झंगेल ने। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। खुर्जा उत्तर प्रदेश से आप सभी तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती और माधुरी किरण। अगले संदेश के साथ श्रोता जुड़ चुके हैं राहट गांव कैंप अमरावती महाराज से हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय और रुद्रा रामेकर। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधुसागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग आकांक्षा, माही मलिक। बुलंदशहर से आप सभी श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अवान अब्बासी। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी, सहारनपुर से आप सभी श्रोता जुड़े हैं। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें मिला है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा जुड़ चुके हैं। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक। एक और संदेश टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष का। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

फिल्म का नाम फना, आवाजें सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। गीत के बोल लिखे प्रसून जोशी ने, संगीत निर्देशन जतिन ललित का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी श्रोता जुड़ चुके हैं। नई बस्ती गंजुडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा बेगम तौसीफ और तैमूर हाशमी, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्कीन, शादरा दिल्ली से। एसएन जावेद शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल होदा गुमला झारखंड से जुड़े हैं। बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ शौर्य नामदेव, मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार नरगिस दूलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद इसा, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन, अल्ताफ, नीलोफर, चूड़ी लाइन मुंगेली से आप सभी का संदेश हमें मिला है। अगली फरमाइश के साथ श्रोता जुड़े हैं योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, फरुखावादी, कासगंज यूपी से आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है। गंडुडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनबर लुबना, आलिया अंसारी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप सभी जुड़े हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सोहनी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आप सभी का ये संदेश हमें मिला है। नागपुर से कमल साहनी, पिंकी साहनी और परिवार के सभी सदस्य। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार रिंकी शेखावत, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से आप सभी का संदेश हमें मिला है। प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंदर, कुलदीप, एकम दमन, अभिजोत, बठिंडा के आप सभी श्रोता हैं। पंचायत बठिंडा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत, मुरली नीरा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। गंडुडवारा से ही जुड़े हैं उज्मा शेख, शिफा, रिफा।

इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली आकोर से विनायक वेंडे, मंगला, विजय शुभम और पवन की। श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे पेपॉन की आवाज में फिल्म लक्ष्मी से, और इसी के साथ कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जैकपॉट से। इस गीत को लिखा तुरज ने, संगीत शाबिर और तोशी का।

सुखविंदर सिंह, कैलाश खेर और जसपिंदर नरूला को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आपकी खातिर में। इस गीत को लिखा था समीर ने, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूम से। आवाज़ें अभिजीत और सौम्या राव की थीं, शब्द रचना समीर की, संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, अगला गीत सुनवाने से पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संबंधी ये सूचना। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में सोमवार 27 जुलाई 2026 को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में विषय रहेगा मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नीलेश गुप्ता, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मस्तिष्क एवं नसों के रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना रेखा भारद्वाज और तोची राणा की आवाज़ों में फिल्म ये जवानी है दीवानी से। इस गीत को लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत निर्देशन प्रीतम का।

कार्यक्रम में चलते चलते ये गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह, मुश्तबा अजीज, शादाब अल्तमश फरीदी, फरहान साबरी और संजय लीला भंसाली की आवाजों में फिल्म बाजीराव मस्तानी से। इस गीत को लिखा AM तुरज ने, संगीत संजय लीला भंसाली का।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं G.R. बेहरे बुआ का ख्याल गाजन। निबद्ध है शुद्ध कल्याण में तबले पे संगत गुलाम अहमद सारंगी पर साबरी की।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे जी आर बहरे बुआ का ख्याल गायन निबद्धता राग कल्याण में। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट

0: ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts